0: है जित हरिया सब कोए, सोत क्यों का रखिया सुतक पवे रसोए, नानक सुत के बना उतरे ज्ञान उतारे तुहे महला पहला।
1: मन का सुत लोभ है जेवा सुत कूड़, अखी सुत वेखना परत रिया परतन रूप, कन्नी सुत कन पहला तबारी खाए, नान खन साधमी बदे जमपुर जा।

0: तैयारी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
1: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

मानस गान प्रोग्राम विच हुणे तुसी सर्वन कर रहे से श्री राम चरित मानस दा लड़ीवार पाठ। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर दे 6:50 होए ने। हुण तुसी परिचे तहत सुनोगे अज प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

10:02 फोन इन प्रोग्राम हैलो फरमाइश पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम विच तुसी फोन कॉल दे राही अपने पसंदीदा फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीत सुन सकोगे। 11:05 का वेला होगा धमक जलंधर पेंदी का। इस प्रोग्राम विच तुहाड़ियां व्हाट्सएप राही भेजिया गई फरमाइशा के गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:05 ते परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े विच मेरी कलम तो सिलसिले के तहत डॉक्टर लखविंदर विर्क की कहानी सुनोगे। इस दे नाल ही सांझ दे तहत क्रिमिनल लॉ 2023 बारे जानकारी देंगे एडवोकेट राकेश गांधी। नाल ही प्रोग्राम शक्ति रूपा भी पेश किया जाएगा। दोपहर 1:15 ते प्रोग्राम फौजी वीरा लई लैके हाज़र होवांगे। दोपहर 2:30 का वेला रहेगा रंगली धरती का। अज दे इस प्रोग्राम विच तुसी मिलखी राम दे गाए लोक गीत सुनोगे। असी अपनी दूजी सभा दे प्रोग्राम लैके हाज़र होवांगे 4:00। 4:02 ते तुसी सुनोगे सदाबहार गीत, जिस विच तुहानू पुरानी हिंदी फिल्मां चों लए गए गीत सुनवाए जाणगे।

0: यत् गते मासे यूपीआई माध्यमेन चतुश्शताधिक द्विसहस्रकोट्यधिकाः धन विनिमयाः अभिलेखिताः। सः सबलं प्रतिपादितवान् यत् धन विनिमय व्ययस्य न्यूनीकरणाय वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणालीषु वैश्विक सहकारः नूतनं लक्ष्यं भवितव्यम्।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतेन नवोन्मेषं सर्वसमावेशितान् च केन्द्रे निधाय वित्तीय प्रौद्योगिक्याः यात्रा नूतनानि शिखराणि प्रति नीता अस्ति। असौ उक्तवान् यत् एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम चेत्यादयः प्रविधयः वित्तीयक्षेत्रे नवीन सम्भावनानां द्वाराणि उद्घाटयन्ति। चतुर्दिवसीयम् ऐषमः ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्येतत् अद्यारभ्य सितंबर मासस्य एकादश दिनांक पर्यन्तं मुंबई नगरे आयोजितः अस्ति। ध्यातव्यमिदं यत् फेस्ट इदं ह्यः एव आरब्धमासीत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य उक्तवान् यत् संकटकाले भारतं सर्वदा दृढतया श्रीलंकायाः पक्षे स्थास्यति। सः उक्तवान् यत् भारत श्रीलंका देशयोः सम्बन्धाः समान इतिहास संस्कृति आस्थासु आधारिताः सन्ति। भारतीय प्रवासी समुदायेन सह संवादावसरे सः एतत् उक्तवान्। असौ एतदपि कथितवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये घनिष्ठाः सांस्कृतिकाः रिक्थसम्बद्धाश्च सम्बन्धाः सन्ति, येन द्विपक्षीयसम्बन्धानां विकासाय सुदृढाधारः प्रदत्तः अस्ति। श्रीसिंहः कोलम्बो नगरं प्राप्तवान्। ध्यातव्यमिदं यत् तत्र असौ श्रीलंकायाः शीर्षनेतृत्वेन सह वार्तां करिष्यति। भारतस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः दीपक मिश्रः कटकनगरे सरला साहित्य सांसदा कलिंगरत्न पुरस्कारेण सम्मानितः अस्ति। पुरस्कारे देवी सरस्वत्याः रजत प्रतिमा, प्रशस्तिपत्रञ्च सम्मिलिते स्तः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणाः न्यायमूर्तिः मिश्रः उक्तवान् यत् मनुष्यः जीवने कियत् दूरमपि गच्छेत् तथापि जन्मभूमेः मृत्तिका, तस्य स्मृतिं, परिचयं, सांस्कृतिक परम्पराञ्च निरन्तरं निर्माति। संविधानस्य उल्लेखं कुर्वन् न्यायमूर्तिः मिश्रः प्रस्तावनायां वर्णितं बन्धुत्वम् एकं जीवन्तनैतिकसम्बन्धं वर्णितवान्। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रालयेन अद्य वाराणस्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय पोषण मासस्य शुभारम्भः करिष्यते। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य उपस्थितौ रुद्राक्ष कन्वेन्शन सेंटर इत्यत्र अस्य अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे राष्ट्रिय पोषण मासस्य विषयो वर्तते अस्माकं आंगनवाड़ी केन्द्राणि अस्माकं दायित्वम् इति इति वार्ताः।
2: वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेरे 7 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12-13 तरीक नूं नवी दिल्ली विच होण वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान रूस के राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन समेत कई देशों के नेतावां नाल दुवलियां मीटिंगां करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रैस लगातार तेज़ रफ्तार नाल अगे वध रही है। उन्हां मुंबई च कल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत ते श्रीलंका दरमियान रक्षा अते समुद्री खेतर विच सहयोग नूं होर मजबूत करन दे उद्देश नाल श्रीलंका दे तीन दौरे ते ने। देश विच सौणी दियां फसलां हेठ बीजिया गया कुल रकबा 1,086 लाख हैक्टेयर तो वध हो गया है। पंजाब पुलिस ने उत्तरी खेतरी पुलिस तालमेल कमेटी NRPCC की 10वीं मीटिंग

अजीज एजाज का एक शेर है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। कितना खूबसूरत शेर है, जो दास्ता है कि बारी मौसम के हो जाए क्यों ना हो, जेकर मानदा मौसम खुशगवार है तो हर मौसम चंगा है। नहीं तो अजय लोग भी होंगे ने जो शिकायत ही करते पाए जाते हैं कि गर्मी बहुत है, सर्दी बड़ी है, मीह तो देखो जी इस बार पिया ही नहीं, मीह तो बड़ा ही पै गया इस बार। कितना मुश्किल है ना मन मुताबिक मौसम का मिलना, पर बड़ा सरल है मन का मौसम पॉजिटिव बना लेना। इसीलिए एक और शेर अर्ज है कि फूल इस वास्ते खिलता है कि तू देखे उसे, मौसम इस वास्ते अच्छा है कि तू सैर करे। इशारा तुसी समझ ही गए होंगे, सवेर शाम का मौसम बेहतर हो रहा है, सो रेडियो सुनते सुनते सैर की जावे या थोड़ी कसरत की जावे तो कितना चंगा होएगा। मौसम विभाग का कहना है कि कल राज दे विच कई थावां ते हल्की बारिश हुई है। कल चंडीगढ़ च वातावरण तापमान 34.7 डिग्री सैलसीयस से घट तो घट 23.2 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया। अमृतसर च वातावरण तापमान रहा 33.9 डिग्री सैलसीयस से घट तो घट 24.8 डिग्री सैलसीयस। लुधियाना च वातावरण तापमान 35 डिग्री सैलसीयस से घट तो घट 25.6 डिग्री सैलसीयस रिकॉर्ड किया गया। पटियाला च वातावरण तापमान रहा 35.5 डिग्री सैलसीयस से घट तो घट 28.2 डिग्री सैलसीयस। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान सूबे के हल्की तो दरमियानी बारिश

1945 च दूजे विश्व युद्ध दे दौरान जापान ने चीन दे सामने आत्म समर्पण कीता सी। 1991 च तजाकिस्तान ने सोवियत संघ तो अज दे दिन आजादी हासिल की सी। 2012 च अज दे दिन इंडियन स्पेस एजेंसी ने सब तो भारी विदेशी सैटेलाइट नू कक्षा च स्थापित किया सी। 1940 दे विच अज दे दिन जॉर्ज सिडबिड्स ने कंप्यूटर दा पहला रिमोट ऑपरेशन शुरू किया सी। 1828 नू अज दे दिन रूसी उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय दा जन्म होया सी। इसे तरह अज दे ही दिन असी याद करदे आं वर्गिस कुरियन नू, प्रसिद्ध उद्योगपति ते चिट्टी क्रांति दे जनक। वर्गिस कुरियन दा निधन अज दे दिन 2012 नू होया सी। सो जी, ये कुछ घटनावां सन जो इतिहास के पन्नियां ते अज दी तारीख दे विच दर्ज ने। अज दी तारीख नू तुसी किवें सार्थक करोगे, इस दे बारे जरूर ध्यान रखना। अज दा दिन तुहाडे लई खास होई, इसे दुआ दे नाल हुण प्रोग्राम दे विच तुहानू सुनाउण जा रहे हैं एक खूबसूरत गीत।

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ PSU ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਸ। ਚਾਹਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181-298-3036। ਈਮੇਲ ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ।
3: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਸ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से UPI का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
4: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
3: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में UPI के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि UPI केवल तकनीकी नहीं

0: बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज दोगुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators,

0: businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
2: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75,000 से 80,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पड़जी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पड़जी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
4: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और

विवाहिताओं के लिए राज्य के हिस्से में ₹2,000 प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश

0: के कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगड़ राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहें, आगे रहें। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज यूपीआई इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ इंडियाज फिनटेक सक्सेस स्टोरी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिस्क्राइब्स इंडियन कम्युनिटी इन श्रीलंका एज इम्पोर्टेंट ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज। US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Frances Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
4: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
3: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. highlighting the global expansion of India's flagship digital payment

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की फिनटेक कामयाबी दी देश यूपीआई का अहम योगदान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका च भारतीय भाईचारे दोवां देशों दरमियान अहम पुल दसिया। अमरीका ने अपने जंगी समुद्री जहाज के हमले के बाद भारत
1: ਦੇ 5 ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਧ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ US ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਅਰੀਨਾ ਸਬਲਿੰਕਾ ਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਟਿਆਫੋ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਏ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक सैक्टर विच हुई शानदार प्रगति की शलाघा की है। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने फिनटेक सफलता की कहानी विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंबई विच ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिर्फ अगस्त विच यूपीआई राही 24 अरब तो वध लैण देण होए ने। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रभाव ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों नूं इह कहण लई प्रेरित किया कि यूपीआई सिर्फ एक तकनीकी कहानी नहीं सगों एक सभ्यता की कहानी है।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: भारत के मोहरी डिजिटल भुगतान प्रणाली के विश्वव्यापी प्रसार का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने समझाया कि यूपीआई हुण 11 देशों में उपलब्ध है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय भुगतानों के खेत्र में जो गतिविधि कदे कल्पना योग नहीं

प्रोग्राम शुरू हो गया जी महक पंजाब दी ते प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी दे गाए इस गीत दे नाल।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बुड्ढे अते जवान 100 गल्ला दी एक गला सही
1: सिर्फ पैसे भेजन ले क्यूआर कोड स्कैन करीदा है जा पिन पाईदा है पैसे मिलन ले नहीं
2: आरबीआई कहंदा है क्यूआर कोड स्कैन करदे समय जा पिन पौंदे समय थोड़ा ध्यान नाल
3: प्रभजोत जी मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है
4: बिल्कुल सुखजीत जी तब्दीली तो हुई है
3: ओ केड़ी तब्दीली है भाई
4: देखो जी जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु ते ओ हुन हो गया शनिवार नु
3: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे
4: बिल्कुल जी ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु
3: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
4: जी
5: तार भारती एक विशेष सूचना आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन फोन नंबर है 0181-298-3036 ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in
6: अंतराल तो बाद एक बार फिर तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी प्रोग्राम चल रहा महक पंजाब दी ते प्रोग्राम च अगला गीत शमशाद बेगम दी आवाज़ च फिल्म दो लच्छियां

शमशाद बेगम दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम महक पंजाब दी च अगला गीत सविता साथी ते साथियां दी आवाज़ च फिल्म यारी जट दी।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। पेश है गजलां दा प्रोग्राम।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 10 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की फिनटेक कामयाबी की कहानी च बेशक UPI का अहम योगदान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका च भारतीय भाईचारे नूं दोवां देशां दरमियान अहम पुल दस्या। औरतां ते बच्चियां दे विकास बारे केंद्रीय मंत्रालय अज वाराणसी विच 9वें राष्ट्रीय पोषण महीने 2026 दी शुरुआत करेगा। पंजाब पुलिस ने उत्तरी खेतरी पुलिस तालमेल कमेटी NRPCC दी 10वीं मीटिंग कीती। पंजाब भर विच स्वच्छता मुहिम दे दूजे गेड़ नूं 12 सितंबर तक वधाया गया। पंजाब दे खजाना योजना आबकारी अते कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ विखे 22 करोड़ रुपए दे GST वस्तां अते सेवावां कर दी चोरी दे एक वड्डे रैकेट दा पर्दाफाश करन दा खुलासा कीता। श्री गुरु रविदास जी महाराज दे 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित पंजाब सरकार वल्लों करवाए जा रहे समागमां दी लड़ी तहत अज 9 सितंबर नूं शाहकोट विखे ड्रोन शो करवाया जा रहा है। पंजाब महिला कमिशन वल्लों औरतां दे शक्तिकरण नूं उत्साहित करन लई अज बठिंडा दे मोड़ विखे शी रनस 2026 मैराथन करवाई जा रही है। भारतीय पैरा तीरअंदाज अज अहमदाबाद विच विश्व तीरअंदाजी पैरा सीरीज दौरान कई तमगियां दे मुकाबलियां च मैदान च उतरनगे। अमरीका ने अपने जंगी समुद्री जहाज़ के हमले तो बाद फारस की खाड़ी च ईरान के 5 तेल टैंकर तबाह किए। दक्षण पछमी मानसून की वापसी शुरू होने तो पहला 12 तो 21 सितंबर दरमियान मध्य दक्षणी पूर्वी और पछमी भारत के व्डे हिस्सों में बारिश होने की उम्मीद। एशियाई खेडों लिए भारतीय दल को कल नवी दिल्ली में शानदार विदायगी दी गई। नौजवान मामलों और खेडों बारे खेडां बारे मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस मौके मौजूद सन। US ओपन विच आरीना सबालेंका ते फ्रांसिस टियाफो ने सेमीफाइनल विच थां बना ली है। ए सन हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 10:02 हो गए हैं। तो हुण वेला प्रोग्राम हैलो फरमाइश का।

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रोग्राम शुरू हो गया जी। हैलो फरमाइश आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से प्रोग्राम लैके हाजिर हो गई है जी तुहाडी होस्त दोस्त देविका। भाई दोस्तों तुहानू तो पता ही है इस प्रोग्राम च तुसी सुन सकते हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत ते इसलिए की करना वह भी तुहानू सारयां नू पता है, पर जिहड़े साडे नाल नवे लिसनर जुड़े आ उन्हां नू दस देना जरूरी है। भाई इसलिए तुसी चुकना फोन ते मिलाउणा है साडा नंबर। जी हाँ नंबर मैं तुहानू दस दिंदी हाँ, साडा नंबर है 2342173। नंबर भी ला के पहुँच जाना जी तुसी साडे स्टूडियो, साडे नाल करनियां गल्लां बातां ते सानू दसनी अपनी फरमाइश जिहड़ी कि असी पूरी करांगे। तो प्रोग्राम च हुण जदों तक असी अपने पहले कॉलर का इंतजार करते हैं ना, आओ तुहानू सुनवाने आ विनोद राठौर का गाया एक गीत।

मुहम्मद रफ़ी दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साढ़े कोल अगले कॉलर भी आ पहुँचे ने, आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो हैलो हैलो हैलो लगता जी इन्हें कॉलर की भी आवाज़ शायद आ नहीं पाई या इन्होंने लगता फोन ही कट दिता है, पर चलो जदों तक असी अपने अगले कॉलर का इंतज़ार करते हैं। प्रोग्राम च मुहम्मद रफ़ी का अगला गीत सुनवाने हैं, पर तुसी एक दिन ही जाना, तुसी 2342-173 मिला के प्रोग्राम च अपनी फरमाइश ज़रूर लैके आनी है। जदों तक अगले कॉलर आते हैं प्रोग्राम च सुनवान जा रहे हैं मुहम्मद रफ़ी का गाया एक गीत।

0: कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: मोहम्मद रफ़ी ते आशा भोसले दे गाए, माफ़ करना, मोहम्मद रफ़ी ते लता मंगेशकर दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साढ़े को अगले कॉलर आ पहुँचे ने। आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो,
3: हैलो, नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
3: सतपाल बोल रहा मैडम, लुधियाने तो।
2: सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
3: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ
2: ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੋਰ

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर कल कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
1: भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाक अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए गए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिलिमे की सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और वहां पहुंचने में कठिनाई के कारण टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के

0: कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। उधर अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिन में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताज़ा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण तथा बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज जेसिका ने एम्मा नवारो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

काका पट्टी ते गुरमेल सिंह विरक। ते अगले साथी ने प्रीतम दास अंगूरा अंगुराना, संत्या देवी अंगुराना वानिया ते अरमान। ये फरमाइश है जी गुरदासपुर तो, अलिका तहसील डबवाली तो लिखते ने रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू ते रजनी। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा तो इंजीनियर अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह ते पवनीत ग्रोवर। ब्रैम्पटन कैनेडा तो लिखते ने निखिल पाटिया, नीति पाटिया ते महरीन पाटिया। अनवर साबरी, शत्रो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर ते जरीफ अंसारी, ये लिखते ने दाऊ सराय सहारनपुर तो। पिंड पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ तो मैसेज है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति ते शिवांश वर्मा दा। न्यू माधोपुरी लुधियाना तो लिखते ने सुरेंद्र शर्मा, सीमा शर्मा, प्रिंस शर्मा। ते कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो मैसेज है ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय दा। दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक रॉय, रोशनी राय ते प्रांजल राय दा। गमहरिया जमशेदपुर तो लिखते ने बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल ते आर्य कुमार जायसवाल। मनदीप सिंह जलालदीवाल जिला लुधियाना तो। अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू ते प्रतीशा संधू, ये लिखते ने जी नवा शहर तो। ते अगले साथी ने पिंड फ्रांसी हिसार तो राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी ते पुष्पेंद्र कुमार दूधी। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ लैंबर हुसैनपुरी दी आवाज़ विच।

शंभूदयाल खट्टक, विमला देवी खट्टक, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार, दीपक कुमार ते कुमारी पूजा खट्टक एक लिखते ने गांव जाखोद राजस्थान तो, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो, दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। अगली फरमाइश है पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक ते मधु नायक दी। पिंड उगाला जिला अंबाला हरियाणा तो लिखते ने रजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन। बागापुराना तो सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर, तेग फतेह सिंह जसगन, वेद प्रकाश कौशल्या, रोहित अर्चना, चित्रा, अक्षु खिलरी लिख देने जी हरिपुरा अबोहर तो। हीराबाग जगराऊं लुधियाना तो जगदीश पाल मेहता, लीलावती मेहता, हरदीप पाल, अंजू बाला, पारुषी ते दीपांशु मेहता। अगले साथी ने जी मोहाली तो अमरदीप सिंह सैनी, लाभ कौर सैनी, जीवन जोत कौर सैनी, सैवी सैनी ते निदिश सैनी। अगली फरमाइश है विनोद संधू, कमल संधू, नितिश, रितिश, आकांक्षा, भारत भूषण संधू दी, जारला टाउन SBS नगर तो। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो लिखते ने जी। रघुवीर नगर तो मैसेज है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब ते लड्डू दा। अगले साथी ने सोनाली, सुरेश नारंग ते आशा नारंग सहारनपुर तो। पिंड कबूल शाह खुब्बन, जिला फाजिलका तो लिखते ने नवजोत, हरमन, हैरी ते हैप्पी। रजाक मोहम्मद, समीम बेगम ते इरफान खान ए मैसेज है जी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान ते बेबी गर्वी सूर्यनगरी राजस्थान तो। जसपुर उत्तराखंड तो लिखते ने रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन ते माहिरा नूर। अगले साथी ने धमधा पिंड सुखरी कला तो अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका ते अंजलि जंघेल। भिलाई छत्तीसगढ़ तो उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल ते नंदनी जंघेल। अगली फरमाइश है जी पिंड तेजा मोदी अंबाला तो बंसीलाल संधू, कबीर ते जेसबीर दी, ते राम सिंह तगर, भिंदर कौर तगर, कमलप्रीत सिंह तगर लिखते ने जी पिंड बुरज मानसा नेड़े मोड़ मंडी तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद आ प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ, AS कंग दा गाया होया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है। सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत रक्तदान शिविरों के आयोजन से होगी। श्री नवीन ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: इसमें करीब 25 अलग अलग कार्यक्रम लिए गए हैं। हर व्यक्ति जो आम जनमानस से इसमें हम अपील करेंगे कि उनके भी योगदान से इस देश के विकास में योगदान मिले, परिवर्तन आए, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम लिए गए हैं। इसमें नवंबर से अक्टूबर के बीच में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर
0: भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है, प्रभावित ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार। जल निकासी और टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूरिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी के

0: केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण और बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: नमस्कार वस्ते वेड़े प्रोग्राम लेके मैं गगन हाजिर
1: और वस्ते वेड़े प्रोग्राम लेके मैं ज्योति भी हाजिर रांची। गगन की हाल चाल ने
0: बहुत वधिया हाल चाल ने और जदों असी एक दूजे नूं मिलदे आ अपने सुनन वाले दे नाल राबता कायम करदे आ ते असी बहुत खुश हो जांदे आ और साडे सुनन वाले नूं भी इंतजार रहिंदा कि इस टाइम वस्ते वेड़े प्रोग्राम आना है और साडियां सवानियां भैणां अपने जिहड़े भी जिस तरीके नाल सानूं सुन रहियां ने उहदे लई तैयार बर तैयार रहिंदियां ने और असी बैठ के अपनियां दिल दियां गल्लां खूब सांझियां करदे आ।
1: बिल्कुल सांझियां करदे ने असी और देखो गगन भैणां साडियां कम्मां काजां च बेशक रुझियां होई ना ध्यान साडे वल ही आउंदा।
0: बिल्कुल सही
1: सुन सानू ही रहियां ने
0: क्योंकि क्यों ना करन क्योंकि यह प्रोग्राम साडा सब दा सांझा प्रोग्राम है साडा खास प्रोग्राम है भैणा दा प्रोग्राम।
1: बिल्कुल जी और देखो भैणा इस वेले कम्मां काजां दा उहनां दा टाइम हुंदा है और साफ सफाई करन दा टाइम हुंदा उहनां दा और गगन कहिंदे कि जदों इक सवानी जिहड़ी हुंदी है ना सफाई करदी है तां इक तरां पूरी दी पूरी नैगेटिविटी जिहड़ी है अपने घर दी बाहर कढ दिंदी है।
0: बिल्कुल सही आ तुसीं और आम तौर ते कई तां सवानियां भैणा इदां दीआं वी हुंदीआं ने कि बिल्कुल घर विच खलेरा नहीं पहन देनिया जिस तरह लगे कोई सिलवट पै गई चादर ते उसी वेले ठीक कर देनगिया और कई बार घर दे उन्हां नूं टोकदे वी हन कि कोई गल नहीं तू बाद चो कर ली पर उन्हां नूं तसल्ली नहीं हुंदी उन्हां नूं लगदा कि साडा घर बिल्कुल सब मतलब साफ सुथरा रहे साफ सुथरा रहे और नाल दे नाल इहो जिहा साडियां सियाणियां सवाणियां ने कि हुण अजकल घर दे नाल नाल अपने वातावरण दा अपने आले दुआला दा वी ध्यान रखना शुरू करता उन्हां ने क्योंकि उन्हां नूं पता है कि अपने घर दे इलावा साडा आला दुआला भी साफ होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है जी क्योंकि साफ सफाई स्वच्छता जिहड़ी हुंदी है सानूं खुशी दिंदी है सानूं चंगी सेहत दिंदी है चाहे वह स्वच्छता जिहड़ी है साडी व्यक्तिगत है चाहे भोजन संबंधी है या साडी आले दुआले की सफाई है यह सारिया गल्लां दा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है और स्पैशली गगन बच्चों नूं यह आदतां जिहड़ियां हन छोटे हुंदे तो अगर असीं पा दईए तो वड्डे होके वह इन्हां नूं चंगी तरह अपना लैणगे।
0: जी बिल्कुल और ऐसी करके साड़ी सरकार भी वक् वक् समय दे उत्ते अजिहे कुछ चीज़ां करदी रहिंदी है कुछ प्रोग्राम लिख के जांदे ने जिहदे विच आम तौर ते बच्चां दी ते खास करके मावां दी सेहत ते जिवें छोटियां कुड़ियां हन या जिहड़ी गर्भवती महिलावां हन या जिहड़ियां जिन्हां महिलावां दे बच्चा हुणे होया और उन्हां नूं दुध दे रहियां ने अपना दुध पिला रहियां ने खास करके इन्हां सारे वर्ग दे विच इन्हां दी सेहत दा ध्यान रख्या जांदा है इन्हां दे खाण पीण दा ध्यान रख्या जांदा है ताकि इन्हां नूं शरीर नूं मजबूती मिले और ए बीमारियां तो बच सकन।
1: बिल्कुल और चंगा पोषण मिलदा रहे इसे लई सितंबर दा जिहड़ा पूरा महीना है पोषण माह वजों मनाया जा रहा है और गगन थीम बहुत वधिया रख्या गया है कि हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेवारी।
0: बिल्कुल
1: और इस थीम दा मतलब यही है कि पिंडा दे विच या साडे आले दुआले साफ सफाई नूं बिल्कुल यकीनी बनाया जावे और खास तौर ते आंगनवाड़ी जिहड़े केंद्र ने उन्हां नूं पूरी तरह साफ सुथरा स्वच्छ ते हाइजीनिक बनाया जावे क्योंकि देखो जदों हमारी शब्द जिथे लग गया ना गगन उथे ये शब्द सानू ये दसदा है कि आंगनवाड़ी सिर्फ सरकारी एक इमारत नहीं है एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि साड़ी ही अपनी कम्यूनिटी है साड़ा हिस्सा है ते उसनू साफ सुथरा रखन च साड़ा सब दा सहयोग तो बहुत ही जरूरी है।
0: बिल्कुल जी और आंगनवाड़ी वर्कर्स नू बहुत वड्डी जिम्मेदारी दित्ती है सरकार ने बहुत सारा कुछ उन्हें मोनीटर करना पैंदा है देखना पैंदा है हर एक तरह उन्होंने गाइड करना है छोटे बच्चों मावां नू खास तौर ते साड़ा भी फर्ज बनता है कि असी आंगनवाड़ी वर्कर्स जिहड़े इन्ना दिल लगा के काम कर रहे हैं जी जान नाल जुटे हुए ने असीं उन्हां नाल पूरा सहयोग करिए जे सानूं किसी जगह ते आके वो कुछ चीज़ दसते ने इस चीज़ नूं पोषण नूं खाओ या अजकल मिलेट्स जिवें मोटा आहार जिहड़ा अनाज है उहदे

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत के संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

0: होंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आओ हुण सुनदे हां साडे अज प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

0: साढ़े छे बजे देहाती प्रोग्राम च कम दियां गल्लां तों इलावा अज तुसी हाड़ी लई बीजां दे प्रबंध संबंधी डॉक्टर टी पी सिंह नाल होई गल्लबात सुन सकोगे, उन्हां तों जानकारी हासिल करोगे। सत्त बज के पंताली मिनट ते डॉक्टर हुकम चंद राजपाल दी हिंदी वार्ता सुन सकोगे, भारतेंद्र की पत्रकारिता। साढ़े सात बजे सुनना पंजाबी खबरां ते सात बज के चाली मिनट समाचार समीख्या। आठ बजे का समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। आठ बज के पंताली मिनट सुन सकोगे समाचार संध्या, नौ बजे न्यूज एट नाइन, सवा नौ बजे स्पॉटलाइट अते साढ़े नौ बजे चर्चा का विषय साढ़े दिल्ली केंद्र तो। मुख खबरों तो बाद होवेगा प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश रात दस बज के दो मिनट, ग्यारह बजे का समा रहेगा हिंदी समाचार का ते ग्यारह बज के पांच मिनट का अंग्रेजी समाचार का। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।
1: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਹੈਲੋ।

0: नमस्कार, भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
1: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: मीडियम वेव 343.3 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले दोपहर दे 1:10 हो रहे ने। हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

फौजी वीरो जय हिंद, मैं हां निधि चुग। अज दे इस खास सफर विच असीं तुहाडे लई कुछ अजिहे गीत लैके आए हां जो तुहाडे मूड नूं खुशगवार बना देणगे, तुहाडे दिल नूं छू लैणगे ते कुछ गीत तुहाडे चेहरे ते इक प्यारी जिही मुस्कान ले आउणगे। चलो फिर शुरू करदे हां साडे अज दे पहले गीत दे नाल, जिस नूं आवाज़ दित्ती है अरिजीत सिंह ते असीस कौर ने।

फौजी वीरो, फिल्मी गीतां दा यह सिलसिला जारी रहेगा, पर फिलहाल तुसी सुनोगे हुण तो कुछ देर बाद पंजाबी खबरां 1:40 ते उस तो बाद साडे दिल्ली केंद्र तो सुन सकोगे उर्दू च खबरां 1:50।

0: करते हुए बीजेपी सदर नितिन नबीन ने कहा कि वजीर आजम आइंदा 7 अक्टूबर को अवामी खिदमात के 25 साल मुकम्मल कर लेंगे। साल 2001 में इसी दिन जनाब मोदी ने गुजरात के वजीर आला के तौर पर अपनी मुद्दतकार का आगाज किया था। उन्होंने मजीद कहा कि इन बरसों के दौरान जनाब मोदी ने अवामी खिदमात से कौमी खिदमात के मंत्र से रहनुमाई हासिल करते हुए अवामी खिदमत के अपने सफर को मजबूती से मुसलसल जारी रखा। बीजेपी के सदर ने जोर देकर कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत की पेशरफ्त सिर्फ तरक्की तक महदूद नहीं रही बल्कि भारत की सकाफती शिनाख्त और विरसे को भी मजबूती मिली। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त जनाब मोदी ने मुल्क की क्यादत संभाली भारत को मफलूज पॉलिसी का सामना था और उसका शुमार दुनिया की 5 कमजोर मईशतों में होता था, लेकिन आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है।
1: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे, जो उनके बेदाग जीवन लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: सेवा संकल्प अभियान खून अथिया कैंप के साथ शुरू होगा। जनाब नबीन ने बताया कि वजीर आजम को तशक्कुर का इजहार करने के लिए गांव और शहरी इलाकों को जोड़ते हुए 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम आज से रवा माह की 15 तारीख तक भारत के दौरे पर होंगे। ये दौरा नायब सदर सीपी राधाकृष्णन की दावत पर हो रहा है। वो कल नायब सदर से मुलाकात करेंगे। इस्माइली बिरादरी के 50वें इमाम की हैसियत से मनसब संभालने के बाद प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम का ये भारत का पहला दौरा है। नई दिल्ली में क्याम के दौरान आगा खान सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला और वजीर खारजा जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। राजस्थान में शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 162 शहरी मकामी बल्दियाती इदारों के लिए वोटिंग सिक्योरिटी के वसी इंतजाम के दरमियान हो रही है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है क्योंकि गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दीगर दरियाओं में पानी की सतह में कमी आ रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गंगा नदी पटना में गांधी घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर ऊपर, दीघा घाट के मकाम पर खतरे के निशान से 109 सेंटीमीटर और हाथी दाह के करीब खतरे के निशान से 165 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है, ऊपर बह रही है। मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में नदी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। आबी वसाइल का महकमा और रियासती इंतजामिया की टीमें पुश्तों पर करीबी नजर रखे हुई हैं। पटना से निधिश्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शगुफ्ता यास्मीन।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल तक बिहार, झारखंड, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा 2 दिन के दौरान उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार जजायर में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी, अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। ब्रिक्स वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की हतमी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत का कौमी तख्जिया महीने का आगाज वाराणसी में हुआ। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी में 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए इस महीने की 17 तारीख से एक माह तक जारी रहने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। और भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटे के दौरान मुल्क की मशरकी और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। फौजी वीरां लई प्रोग्राम जारी है। फौजी वीरो, प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे हां। राहत फतेह अली खान ते महालक्ष्मी अय्यर दी आवाज़ विच फिल्म दा नाम है झूम बराबर झूम।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों

और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा

0: में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दीक्षा नायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है, ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का

0: अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
1: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जन सेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रगति, पहचान और विरासत मजबूत हुई है।
2: सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी जड़ों को मजबूत किया गया। बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से
0: जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जुड़ी व्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का प्रयास किया।
2: उन्होंने सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही हुए भी बदलाव आया है और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुदुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए

0: आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डी दोनों के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आओ हुण सुनदिया लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी मिलखी राम दे गाए लोक गीतां दा आनंद मानोगे।

नमस्कार। तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लेके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तजिंदर सिंह हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम च असीं तुहाडे वल्लों भेजियां जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं शामिल करदे होए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करदे हाँ। दोस्तों अज असीं गल करांगे समाज विच बच्चे अंदर मोबाइल फोन की वध रही वरतों कारण समाज अते बच्चों नूं हो रहे नुकसान संबंधी। दोस्तों अज समाज विच असीं आम ही देखते हैं कि बच्चे अंदर मोबाइल फोन चलाउण दी आदत वधदी जा रही है ते इस दे बहुत सारे हानिकारक नतीजे भी मोहरे सामने आ रहे ने। यह तो आम ही परिवार च देखण लई मिलदा है कि बहुत सारे मापे अपने छोटे बच्चों नूं कार्टून जां होर वीडियो गेम लगा के मोबाइल फोन दे दिंदे हन ता जो वो अपना काम आसानी नाल निपटा सकन। पर दोस्तों यह सब कुछ तुहाडे बच्चों लई नुकसानदेह है क्योंकि इस नाल बच्चों दी अखां नूं वड्डे पद्धर ते नुकसान पहुंचदा है। हुण तां डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि बच्चों नूं ज़्यादा मोबाइल वेखण लई ना दिओ। दोस्तों ये गल्लां प्रोग्राम दे नाल नाल चलदियां रहणगियां। प्रोग्राम दी पहली फरमाइश लई सानूं चिट्ठियां भेजण वाले ने मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाणा तो विनोदपुरी वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी बीकेपुरी कैलाश अनीता ममता मेघा पूजापुरी गगन कपूर गुंजन कपूर लालसा कपूर रामा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक हरीशपुरी सतीश राकेश विनोद पाली डीसीपुरी अरुणपुरी नेहा एकता शम्मी बोधी सुनील वीकेपुरी ते आरएसपुरी। इसी तरह पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग अश्विनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान ते लव दीवान। पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता राणी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया ते बेबी आरजू जाजोरिया। चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा बिमला अनेजा ते होर इन्हां दे परिवारक मैंबर। इसी तरह पिंड तंगोरी जिला मोहाली तो गुरप्रीत सिंह तंगोरी जग जसवीर कौर महकप्रीत कौर ते सहजप्रीत सिंह। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश सुणदे हां प्रोग्राम दा पहला गीत।

0: बीबी पत्री कुछ ऐदा दसदी है
1: कुछ चंगा दसना पंडित जी
0: गड़बट जमाना कट बीबी गड़बट जमाना

हाकम सूफी दी आवाज विच तुसी सुन रहे सी खूबसूरत गीत मेहंदी मेहंदी। डीटीएच दी पंजाबी प्रसारण सेवा ते आरजे तजिंदर सिंह कोलो तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। दोस्तों तुसी भी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां च अपनी फरमाइश ते गीत सुनन लई सानू चिट्ठियां भेज सकदे हो। चिट्ठियां भेजण लई साडा पता है प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी जलंधर। दोस्तों तुसी सानू वध तों वध चिट्ठियां भेजो, असी पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडे वल्लों भेजियां जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं प्रोग्राम च शामिल करदे हुए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करिए। प्रोग्राम दी अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजण वाले ने पिंड घुड़ियाणा जिला फाजिलका तों बाबा त्रिलोक सिंह सुखना, शिवजोत सिंह, बलतेज घुड़ियाणा ते भोला सुवाग, पिंड खाने की ढा मलोट तों शमशेर सिंह कौलधर, जसविंदर कौर, करन प्रताप सिंह, मनरीत कौर, तरनवीर सिंह ते मनताज, रिंगणी छत्तीसगढ़ तों दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ते होरना दे परिवारक मैंबर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी तों द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, चावेंद्र कुमार वर्मा, पिंड पंगाला जिला फाजिलका तों कमलदीप गिल, गैवी गिल, दिलप्रीत सिंह, एकम मोहन सिंह, मिंदरपाल, गुरमेल सिंह, बोर सिंह ते होर इन्हां दे परिवारक मैंबर। इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।

दोस्तों तुसी सुन रहे सी हंसराई हंस दी आवाज विच खूबसूरत गीत चोरनी। दोस्तों असीं गल कर रहे सीगे बच्चियां च मोबाइल फोन दी वध रही वरतों दे नुकसान बारे। दोस्तों सानू अपने बच्चियां नू मोबाइल फोन देन दी बजाए समां कढ़ के उन्हां नाल खेडना चाहीदा है, गल्लां करनियां चाहीदियां ने ते जित्थों तक हो सके बच्चियां नू चंगीआं किताबां पढ़न लई उत्साहित करना चाहीदा तां जो उन्हां दीआं अक्खां खराब ना होण ते उन्हां दा बौद्धिक विकास भी हो सके। दोस्तों प्रोग्राम की अगली फरमाइश लिए सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने महस गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव ज्योति राणी ते गुरमन्नत, पिंड आजमवाला तहसील फाजिलका तो सोहन सिंह बुक, निशान सिंह बुक, सीरत कौर, कीरत कौर, जसवंत कौर ते अमरलाल पोस्टमैन। दोस्तों इस तरह सहारनपुर तो आशा नारंग ते सुरेश नारंग, टालीवाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर ते हरजिंदर, कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, हार्दिक, निहारिका ते वंश बत्ता। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे आं प्रोग्राम दा अगला गीत।

दोस्तों तुसी सुन रहे सीगे बी प्राक दी आवाज विच खूबसूरत गीत रब्बा मेरिया। प्रोग्राम दी अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजण वाले ने पिंड अमीर शाह वाला जिला फिरोजपुर तो मुख्तियार सिंह वरवाल ते होर बहुत सारे दोस्त मित्र, पिंड जंडवाला चढ़त सिंह तो राकेश नरेश जगदीश अनिकेत अंश सुमित रहेजा ते गैला सिंह, बागा पुराणा तो सतनाम सिंह रखरा अमरजीत कौर रखरा तेग फतेह सिंह रखरा ते जसगुन रखरा, पिंड समालसर जिला मोगा तो लक्ष्मण सिंह घारू रहमत लदाई राजवीर घारू अनमोल घारू अरमान घारू ते अमानत घारू, चाहल कला नवाशहर तो अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर अंबा चाहल, साधुल शहर तो ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश वेद प्रकाश चौहान, स्टार रेडियो स्रोता संघ रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला शोभा नायक जे एस नायक ते पूरा डागला परिवार। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।

उत्तर खेतरी पुलिस तालमेल कमेटी की मीटिंग की मेजबानी की। पंजाब सरकार ने सूबा पदरी सफाई मुहिम के दूजे गेड़ नूं 12 सितंबर तक वधाउण दा ऐलान किया। पंजाब के उद्योग अते वनज मंत्री अमन अरोड़ा ने यूएई दे चोटी दे कारोबारी समूहां अगे सूबे दी व्यापार विकास नीति 2026 अते सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम दा खाका पेश किया। अते अहमदाबाद विच विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज च अज भारतीय तीरंदाज वख-वख मुकाबलियां विच सोने अते कांसी दे तमगियां लई मुकाबला करनगे। ए सी अज दियां न्यूज़ हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आहुन सुनदे हां सदा बहार गीत। ते पहला गीत हाजिर है किशोर कुमार दी आवाज़ विच।

0: मैं प्रभु निर्णय का चाओ। इस शब्द का गायन किया सी भाई सतविंदर सिंह अते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। प्रभु नाल प्रीत मिलाप दा सुभाग हर किसे नूं प्राप्त नहीं हुंदा। विशेष गुणा वाली जीव रूप स्त्री जां गुरसिख ही ए लाहा लै सकदे हन। हुण प्रश्न है कि ओह किहड़े गुण धारण करिए कि प्रभु वस विच आ जावे। बाबा फरीद जी 126वें श्लोक विच प्रश्न करदे ने, कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हाउ करी, जित वस आवै कंत। ते आप जी खुद ही 127वें श्लोक विच उत्तर भी दिंदे ने, निवण सो अखर खवण गुण, जेहबा मणिया मंत, ए त्रै पैणे वेस कर ता वस आवी कंत। पर सवाल ए भी है कि किना गुणा करके प्राणा दे साई प्रभु नाल मिलया जा सकता है। ना मेरा रूप है, ना मेरे पास बुद्धि है, मैं तां दूर परदेस विच वसदी हाँ। ना मेरे पास तन है, ना जोबन है, मैं तां अनाथ हाँ। हे प्रभु जी मेरी सार लो। हे प्रभु मैं तां तैनूं ढूंढ ढूंढ के वैरागण हो गई हाँ, दर्शना दी तिहाई हाँ। मैनूं साध संगत बख्श के मेरी तृष्णा अग्नि शांत करो। राग गौड़ी पूर्वीच फरमान है, कवन गुण प्राण पात मिलाओ मेरी माई। ए वार्ता सुना रहे ने डॉक्टर निशा शर्मा।
1: ए इलाही फरमान श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजमा सिरलेख अधीन उचारे शब्द दी पंक्ति है। इस पंक्ति अनुसार प्रभु प्राणा दा दाता है, सिरजन हार है। जपजी साहिब दे आरंभ विच मूल मंत्र विच असी उस परमात्मा दे गुण गांदे होए गुरु नानक देव जी दे इना शब्दां नूं रोज दोहरांदे हां। परमात्मा एक है, सारी सृष्टि विच सर्व व्यापक है, उसका नाम सच्चा है, ओहो सिरजनहार है, उसने

ही सारी कुदरत नूं रचया है। ओह भै तो रहत है, निर्वैर है, काल दे प्रभाव तो मुक्त है। गुरबाणी अनुसार सर्व गुणा वाला परमात्मा अकाल पुरख व्यंत है, ते असी जीव अब गुणा नाल परे हुए हां। हे प्रभु, फिर तेरा साडे नाल मिलाप किमें हो सकता है? प्रभु जिंद दा सहारा है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी उस अकाल पुरख अगे नमस्कार करदे हुए फुरमांदे हन कि उठदियां बैठदियां सुत्तियां जागदियां मैं हर वेले तैनू याद करां। मेरा मन सुख दुख मेरी हर एक पीड़ा प्रभु जी आप दे अगे अरजोई बन के पेश हुंदी है। जो प्रभु करदा है उसे विच मेरी भलाई है। सवाल पैदा हुंदा है कि फिर कीर्ति क्यों करनी है, प्रभु दा जस क्यों गाउणा है? इसदा उत्तर है कि इस गाउण दे नाल ही मनुख दे अवगुण दूर हुंदे जांदे हन ते गुणा विच वाधा हुंदा जांदा है। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, इस शब्द विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी उस प्रभु अगे उस प्राणा दी दात देन वाले उस सुख दाते अगे अरदास करदे हन कि हे मेरी मां, मैं केड़े गुण अपनावा जिस नाल मेरी उस परम पिता नाल प्रीत पै जावे, मेरा प्रभु मैनू मिल सके। सब अबगण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई? ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना। इस करके प्रभु अगे बेनती ही करनी बनदी है कि हे समर्थ प्रभु, आप जी दे अगे बार बार नतमस्तक हां, सानू कृपा करके डोलन तो बचाओ। खोजत खोजत पई वैरागन, प्रभ दर्शन को हो फिरत तिसाई। जीव रूपी इस्त्री दे रूप विच पंजवे पातशाह गुरु अर्जन देव जी फरमांदे हन कि अपने प्राणपति परमात्मा दे दर्शन वास्ते प्यासी फिर रही हां, उस प्रीतम नू लभदी लभदी कमली होई पई हां। जदो जीव आत्मा अपने प्रीतम दे मिलाप दी तांग विच व्याकुल हो जांदी है तां हो अपने उस प्यारे नू लभण लई थां थां भटकदी है। जीव इस्त्री दा मन प्रभु दे दर्शन लई इन्ना प्यासा हुंदा है कि उस प्रीतम प्यारे दे मिलाप तो बिना कोई होर चीज उसनू तृप्त नहीं कर सकदी। असल बैराग दुनिया दे त्याग तो नहीं बल्कि मन विच्चों झूठे मोह नू छड्ड के प्रभु दे दर्शना दी सच्ची प्यास पैदा करन दे नाल है। गुण कीरत निद मोरी, तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस ओट प्रभ तोरी। इना पंक्तियां विच गुरु अर्जन देव जी ने फुरमाया है उस प्रभु दे गुणा दी सिप्त सलाह ही मनुख लई सब तो वड्डा खजाना है। जीवन दी असल पूंजी उस दाते दी सिप्त सलाह अते गुणा नू अपने जीवन विच धारण करना है। मनुख आम तौर ते सुख रस धन मान सम्मान रिश्तियां अते पदार्थां विचो लभदा है, पर असली आनंद दा स्रोत तां हो सच्चा प्रभु ही है। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक, साध संग मेरी जलन बुझाई। वार्ता दे सिरलेख वाले शब्द विच गुरबाणी दा फरमान है कि प्रभु जो के गरीबां निमाणियां अते दुखियां उत्ते दया करन वाला है उसदी मेहर दे नाल साधु जना दी संगत मिलदी है। इस साध संगत दे विच आ के जीव दे अंदरों जो उसदे प्रीतम दे विछोड़े दी अग मन दी बेचैनी अते तड़प हुंदी है ओ शांत हो जांदी है। जदो जीव साधु जना दी संगत विच विचरदा है तां उसनू गुरु दे शब्द ते नाम दे राही जीवन दी सूझ मिलदी है। भगत जना दी संगत करन नाल मन हौली हौली टिक जांदा है ते अंदरली अशांति दूर हो जांदी है। सच्चे गुरु दी मेहर नाल

विशेष सूचना आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर

0: स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज वन जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हुण तुसी सर्वन कर रहे सी साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 861 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी ते 6 बज रहे ने। हुण तुसी हिंदी च समाचार सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनेक्स,

0: व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया के शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले दो सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत और स्वाति चौधरी ने W1 व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में तोमन ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343 RHA मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, TRM 854 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स और DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो दी घड़ी ते 6:05 हो रहे ने। लो हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

शाम 6:03 ते पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस काम दीआं गल्लां हाड़ी लई बीजां दा प्रबंध बारे जानकारी लवांगे डॉक्टर टीपी सिंह हुणा कोलों ते मेरी खेती विच जानकारी लवांगे एकम सिंह हुणा कोलों। शाम 7:45 ते हिंदी वार्ता प्रोग्राम च जानकारी लवांगे विषय ते भारतेंद्र की पत्रकारिता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर हुकुम चंद राजपाल। रात 8 बजे समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है था। रात 10:02 ते पेश करांगे प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश। ਇਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने

0: आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज वन जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: पंजाब हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश दे बीएसएफ पेंशनर लई पेंशन नाल संबंधित शिकायतां दे निपटारे लई पेंशन अदालत 11 सितंबर 2026 नूं फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जलंधर विखे सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक आयोजित कीती जावेगी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपने नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पंजाब दे व्यापार ते सनत मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई च इन्वेस्ट पंजाब समागम नूं संबोधन कीता। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियां समेत यूएई दे कारोबारियां नूं पंजाब विच निवेश करन दा सद्दा दित्ता। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी आनंदिता मित्रा ने 18 साल दी उमर दे नौजवानां नूं नवें वोटरां वजों रजिस्टर करन लई अपील कीती। कीनिया दे सिक्ख्या मंत्रालय दे कुछ पदरी वफद ने अज पंजाब दे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे मनुक्खी अधिकार कमीशन दा दौरा कीता। अज तो नौवां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है। पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ते विश्व दे पहले नंबर दे खिडारन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज पड़ा 3 च आपो अपने मुकाबलियां विच सोने दे तमगे जीते ने। हुण खबरां विस्थार नाल। पंजाब 7 तो 9 सितंबर तक दुबई विच होण वाली सालाना निवेश मीटिंग AIM कांग्रेस विच हिस्सा ले रहा है, जो कि राज विच अंतरराष्ट्रीय निवेश नूं आकर्षित करन दीआं कोशिशां दे हिस्से वजों है। पंजाब दे सनअत ते व्यापार मंत्री अमन अरोड़ा दी अगवाई विच राज दे वफद ने नीति निर्मातावां निवेशकां ते व्यापारक आगुआं नाल मीटिंगां कीतीआं तां जो राज दे कई खेतरां विच मौकिआं नूं दर्शाया जा सके। श्री अमन अरोड़ा ने AIM कांग्रेस विखे इन्वेस्ट पंजाब समागम नूं संबोधन कीता। दुबई च साडे पत्रकार नाल गल्लबात करदिआं मंत्री ने पंजाब निवेशकां प्रति सुखावियां नीतियां अते निर्माण हल्का इंजीनियरिंग खेतीबाड़ी अते फूड प्रोसैसिंग लॉजिस्टिक टैक्सटाइल साफ सुथरी ऊर्जा IT सेवावां अते उपर रहियां तकनालोजियां वर्गे खेतरां विच मौकिआं ते चानणा पाया।
3: UAE और पंजाब दे विच बहुत सारियां सिमिलैरिटीज ने, बहुत सारियां समानतावां ने। असीं इक बहुत ही शानदार इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी है, जिहड़ी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी उह लैके आया, जिहदे तहत प्रायोरिटी सैक्टर्स ने और बिजनेस कम्युनिटी उन्हां सैक्टर्स नूं चलाउंदी है और की इशूज ने, पॉलिसीज ने उन्हां दे मुताबिक बणी ने, जिहदे विच चाहे फूड प्रोसैसिंग है, लाइट इंजीनियरिंग है, गारमेंट्स ने, इन्हां सारियां चीजां दे विच पंजाब सरकार दी पॉलिसी बड़ी प्रोएक्टिव है। और दो दिनां तों जो साडी मीटिंग चल रही है ने, अथॉरिटीज दे नाल बड़ी प्रोडक्टिव गल हुई है, और मैं समझदा कि आने वाले समय दे विच दोनों जगहों दे विच UAE और पंजाब दे आपस दे विच साडी जो ट्रेड है वो वड्डे पद्धर दे उपर वो एनहांस होएगा।
2: उन्होंने कहा कि राज तरजीही खेतरां लई इंसेंटिव दी पेशकश करता है, नाल ही इन्वेस्ट पंजाब राही सिंगल विंडो क्लीयरेंस, समामत प्रवानगियां अते समर्पित निवेशक सहूलत भी प्रदान करता है। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियों समेत UAE के कारोबारियों पंजाब विच निवेश करने लई सदा दिता है ते कहा कि

0: हाँ जी पटवारी साहब घरे ही हो।
1: आजो आजो आजो बल साहब बच्चे वाले हो आजो आजो।
0: पटवारी साहब जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी जय हिंद जी। होर सुनाओ बल साहब की हाल चाल तुहाडा।
0: हाल चाल तगड़ा मेरे उस रब दी इस तक कहने सब ते बनी रहे। तुसी सुनाओ
1: तकड़ा तकड़ा जी। देखो
0: जी।
1: गल इदा है कि साडा हाल चाल ते तकड़ा,
0: हाँ जी
1: पर मैं ना अज पिंड चों जदों निकल रहा ही बैठक च आण दे
0: हाँ
1: लई
0: जी हाँ जी
1: ते देखिया वो जोगिंदर वाले पासे बड़ा घर रौला जा पाया होया
0: हाँ जी हाँ
1: सीगा।
0: जी
1: की गल हो गई?
0: थानू नहीं पता?
1: मैनू तां पता ही नहीं लग्या की गल हो
0: लै
1: गई।
0: तुसी भी कमाल करदे हो। वो जोगिंदर दा मुंडा जिहड़ा वड्डा,
1: हाँ
0: ओहो बस थानू पता ही है फिर गलत संगत च पै गया सीगा। ते
1: ओहो
0: मुंड
1: अच्छा।
0: हाँ जी वो नशे पत्ते वाले मुंडे से उन्होंने फिरता सीगा, ते तुहानू पता ही है फिर मुड़ के इहदा अंत की हुंदा हुंदा, कल ही कहिंदे मौत हो गई उहदी।
1: ओए होए होए होए
0: हाँ
1: होए
0: जी
1: होए। तुसी देखो ना जी, अजकल ये जिहड़ी साडी नौजवान पीढ़ी है
0: जी
1: ये नशियां दे विच इन्ना क ज़्यादा,
0: जी
1: सारे तां मैं नहीं कहिंदा पर ज़्यादातर जिहड़े
0: हाँ
1: साडे
0: जी
1: नौजवान ने
0: जी
1: ओह कुछ पढ़े लिखे भी ने,
0: बिल्कुल जी
1: कुछ जिन्हां ने पढ़ाई नहीं भी कीती है
0: हाँ
1: वो भी ने,
0: जी
1: बहुत ज़्यादा इस दलदल दे विच फस
0: बस
1: चुके ने।
0: कहण दी गल नहीं पटवारी साहब।
1: तुसी देखो ना हुण जोगिंदर दा मुंडा,
0: हाँ जी
1: मैं भी इहनूं कई बार समझाया
0: हाँ जी
1: कि पुत्र ये जिहड़ी माड़ी संगत च तू पै गया
0: हाँ
1: है
0: जी
1: इहदे विच कुछ नहीं रखिया।
0: पर कित्थे सुणदे आ
1: मुंडे सुणदे नहीं अजकल,
0: जी।
1: ते उहनूं समझाया कहिंदा कोई नहीं अंकल जी मैं वेख लांगा,
0: अच्छा जी
1: ते गल अणसुणी जी कर दित्ती।
0: ले देख लो
1: पर पता तां सीगा भी ये मुंडा जिहड़ा है गलत जिहड़ी संगत है
0: हाँ
1: उहदे
0: जी
1: च पै गया है,
0: जी
1: ते नशियां दे विच पै गया। कई बार आले दुआले आंढियां गुआंढियां ने भी
0: ओ
1: समझाया
0: पता लग ही जाता पर समझते कितने अगर
1: कितने
0: नहीं।
1: समझदे, पर अज तुसी जिहड़ी ये गल दसी
0: हाँ
1: है
0: जी
1: ये तां वाकई जी बड़ी मनभागी
0: हाँ जी
1: घटना हुई है परिवार दे नाल। पर देखो अज जिहड़ा भी ये जिथे जिथे साडी आवाज़ जा रही है,
0: जी
1: वैसे तो सारे परिवारों को ये चीज़ जरूर देखनी सोचनी चाहिए
0: हाँ
1: है
0: जी
1: कि साडे बच्चे करते की है,
0: बिल्कुल जी
1: साडे बच्चे किनू मिलते हैं,
0: हाँ जी
1: किहदे कोल जाते हैं,
0: सही गल है जी
1: और उन्हां दी संगत की है।
0: बिल्कुल जी
1: और जदों असीं अपने बच्चे दे उपर पूरी तरह दे नाल नज़र रखते हैं
0: हाँ
1: ना,
0: जी
1: उस वेले ये सानूं पता लग जाता है कि ये बच्चे दी संगत चंगी है कि माड़ी है।
0: माड़ी है बिल्कुल जी
1: वो जे असीं

किसान वीरों अगर खेती करनी हो इसकी बिजाई जी 1 तो 15 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए है और इसका बीज की मात्रा जी है तकरीबन 15 किलो प्रति एकड़ वरतनी चाहिए है। सो ये तो सी जी तेल बीज दिया फसलों तो हूँ आप गल करिए साडे पशुओं के लिए हरे चारे के बारे। सो किसान वीरों हरे चारे की अगर गल करिए सब तो पहला तुम पता है बरसीम जड़ा है एक फलीदार किस्म है। बरसीम बहुत ही साढ़े व्डे पद्धर के उत्ते पंजाब दे विच बीजा जाता है तो पशुओं के लिए हरे चारे की एक प्रमुख फसल है। इस दे विच किसान वीरों साढ़े को बरसीम BL-10 BL-42 BL-43 BL-44 इन्हां चार किस्मों का बीज उपलब्ध है। 8 तो 10 किलो बीज प्रति एकड़ वरतन की सिफारिश की जाती है। बीजन का जिहड़ा समा है जी ढुकमा सितंबर अखीर तो अक्टूबर का पहला हफ्ता है तो इसनूं लेट तो लेट असी नवंबर तक भी बीज सकते हाँ। इस तरह जवी है क्योंकि जवी एक गैर फलीदार हैगी। बरसीम दे विच खासियत है जी ये सानूं कटाइया दिंदी है तो अध जून तक भी कई बार कटाइया दे जांदी है जिहड़ियां साडियां के हाड़ू किस्मां ने जिवें BL-10 है। जवी जिहड़ी है उस दे विच OL-10 है OL-14 है OL-15 है OL-16 OL-17 किस्मों का बीज उपलब्ध है। तकरीबन 25 किलो बीज असी सिफारिश किया हो यूनीवर्सिटी ने प्रति एकड़ बिजाई करने के लिए वधिया झाड़ लैण के लिए अक्तूबर के पहले हफ्ते तो अक्तूबर के अखीरले हफ्ते तक इसकी आप सफलतापूर्वक बिजाई करके वधिया जिहड़ा झाड़ इस तो लै सकते हैं हरे चारे का। इस तो इलावा किसान वीरों साडे कोल राई घा एक बहुत ही उत्तम किस्म का गैर फलीदार ज़्यादा प्रोटीन वाला प्रोटीन भरपूर एक हरा चारा है। ये भी काफ़ी कटाइया दिंदा 6 तो 7 कटाइया दे दिंदा है। इसका जड़ा हैगा बीज की मात्रा तकरीबन 4 किलो प्रति एकड़ वरतन की सिफारिश की गई है। सितंबर अखीर तो लैके अक्टूबर का पहला हफ्ता इसकी बिजाई लिए ढुकमा है। सो किसान वीरों ये जड़ा हर जड़ा राई घा है इस दे नाल पशुओं नू किसी भी बन वगैरह पैण की कोई समस्या नहीं आती। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक हरे चारे की फसल है। किसान वीरों इस तों इलावा तुहाड़ी सहूलत दे लई पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा वालों दालां अते तेल बीज दीआं किट्टां भी तैयार कीतीआं गईआं ने जिन्हां दे विच छोले मसर गोभी सरों अलसी ये जिहड़ा पैक कीता गया है तां कि किसान वीर अपने छोटे पद्धर दे उत्ते अपने घरेलू जरूरत नूं पूरा करन दे लई इन्हां किट्टां तों लै के अपनी बिजाई करन। छोले उस दे विच किसान वीरों तकरीबन 400 ग्राम पाए गए ने जिस दे नाल तकरीबन 4.5 मरले का एरिया बीजा जा सकता है। मसर 250 ग्राम ने तकरीबन 3.5 मरले बिजाई लिए काफ़ी ने। गोभी सरों के 200 ग्राम है 1 तो 1.5 कनाल जड़ा रकबा इस बीज दे नाल बीजा जा सकता है। तो अलसी जी है किसान वीरों इस दे 200 ग्राम है जिस दे नाल 2.25 मरले तकरीबन जड़ा आप बीज सकते हाँ। सो ये अपने घरेलू जरूरत नूं पूरा करन दे लई बहुत ही वधिया किट तैयार की गई है। सो किसान वीर जिहड़े मेलियां दे उपर अपने यूनिवर्सिटी दे विच आउणगे इन्हां किट्टां नूं लैण लई भी तरजीह देण। इस तों इलावा हरे चारे की किट भी किसान वीरों तैयार की गई। कई बार किसानां नूं पता नहीं लगता भी किहड़ा बीज सानूं चाहीदा किहड़ा नहीं चाहीदा जां जिन्हां दे कोल 1 जां 2 पशु ने उन्हां दे लई बहुत ही वधिया हरे चारे की किट है जिस दे विच बरसीम 350 ग्राम है तकरीबन 7 मरला एरिया जिहड़ा बीजा जा सकता है। जवी 800 ग्राम है 5 मरला एरिया बीजा जा सकता है। राई घा 200 ग्राम है तकरीबन 8 मरले जगह दे लई ढुकमा है। तो तोरिया भी विच किसान वीरों इस दे पाया होया 50 ग्राम जिहड़ा कि असी बरसीम दे विच रला के बीजण की सिफारिश करते हैं। जे किसी किसान वीर ने तोरिया जिहड़ा है अलग तो सानवा भी बीजना होवे तां तकरीबन 5-5.5 मरले उस दे नाल जगह लग सकती है। सो किसान वीरों ये तो सी साड़ियां जड़ियां फसलां दे बीज। इस तों इलावा किसान वीरों घरेलू बगीची दे लई जड़ियां साड़ियां सब्जी दीआं किट्टां वह भी उपलब्ध होणगीआं इन्हां मेलियां दे उपर। जिहड़ा किसान वीरां ने हुण पहलां भी जड़ियां सब्जी दीआं किट्टां लैणियां ने वह साडे कृषि विज्ञान केंद्र जिहड़े हर जिले दे विच मौजूद ने उत्थे पहुँच चुकिआं ने। उत्थों जा के तुसीं सब्जी दीआं किट्टां भी प्राप्त कर सकते हो। सब्जी की किट दे विच 10 सब्जियां का बीज उपलब्ध है जी। उस दे विच मटर है शलगम है गाजर मूली पालक मेथी मेथा धनिया चीनी सरों ते ब्रोकली इन्हां 10 जिहड़ियां सब्जियां ते किस्मां दे बीज पाए गए ने। इस तों इलावा किसान वीरों सब्जियां दे छोटे पैकेट जिहड़े खुले जिसनों आपां बीज भी कह सकते हैं वह भी सारे ही किसान मेलियां दे उपर उपलब्ध होणगे। उन्हां दे विच शिमला मिर्च का बीज मिलेगा हरे मटर का बीज भी मिलेगा लाल टमाटर केसर चैरी टमाटर हाइब्रिड बैंगन गोभी ब्रोकली प्याज चीनी सरों मेथी मेथा धनिया पालक काली अते लाल गाजर मूली अते शलगम तकरीबन इन्हां सारियां किस्मों के बीज सानू इन्हां मेलियां दे उपर उपलब्ध होणगे। जिहड़ा किसान वीरो लुधियाणा दे विच जिहड़ा मुख किसान मेला लगता है सितंबर दे विच 26-27 सितंबर 2025 नूं लगन जा रहा है। सो

0: कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है, तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर एक सवाल के जवाब विच मंत्री ने दस्या कि बुलेट ट्रेन सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्हें कहा कि इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य तेजी नाल आगे बढ़ रहा है।
0: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल वालों अज लए गए फैसलों नाल मुसाफरों की आवाजाही तेज होगी, संपर्क बेहतर होगा, माल ढो ढुआई की समर्था बढ़ेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए तो वध की लागत वाले 5 रेलवे प्रोजेक्ट दक्षणी भारत में रेल संपर्क को हुलारा देंगे और इस नाल लखां लोगों को फायदा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके नाल मुलाकात की थी, भारत के श्रीलंका विचकार बहुपक्षी भाईवाली के समुचे पहलुओं बारे चर्चा की थी। मीटिंग दौरान दोवां नेतावां ने इस गल की पुष्टि की थी कि भारत ते श्रीलंका खेतर की सुरक्षा, अमन ते खुशहाली नूं यकीनी बनाउण लई रल के काम करना जारी रखणगे। दोवां नेतावां ने यह भी पक्का किया कि सभ्याचारक तौर ते जुड़े होण, नेड़ले गुआंढी होण अते समुद्री भाईवाल होण दे नाते ओह विकास अते लोकां दी भलाई लई रल के काम करना जारी रखणगे। दोवां नेतावां ने श्रीलंका की हवाई फौज लई L-70 तोपां नूं अपग्रेड करन अते दोवां देशां दे राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC ते राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजां विचकार सहयोग बारे समझौता पत्रां ते भी दस्तखत कीते। इन्हां हवाई रक्षा तोपां दी अपग्रेडेशन श्रीलंका विच अहम संपत्तियां दी हवाई रक्षा प्रणाली नूं मजबूत करेगी। इस दौरान अकादमिक सहयोग बारे समझौता पत्र ज्ञान दे वटांदरे नूं सुखाला बनाउणगे तां जो दोवां देशां विचकार अकादमिक संबंधां नूं होर मजबूत किया जा सके अते NCC युवा वटांदरा प्रोग्राम नूं रस्मी रूप दिता जा सके। दोवां नेतावां ने भारतीय रक्षा फौजां वल्लों उसारे गए 3 बेली पुलां दा वर्चुअल तौर ते उद्घाटन किया। मीटिंग दौरान श्री सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों श्री दिसानायके नूं शुभकामनावां दित्तियां। इस दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल अपनियां मुलाकातां नूं याद कीता ते कहा कि श्रीलंका कदे भी अपनी धरती दी वरतों भारत दे सुरक्षा हितां खिलाफ नहीं होण देगा। माली खुफिया इकाई FIU-IND दे डायरेक्टर ने 15 वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सेवा प्रोवाइडर्स नूं मनी लॉन्डरिंग रोकथाम कानून PMLA 2002 दी पालना ना करन लई नोटिस जारी कीते ने। इन्हां विच बिटोनिक्स, डिजीफिनिक्स, पायोनेक्स, वाइट बिट, फिक्स फ्लोट अते टू बिट शामिल ने। खजाना मंत्रालय ने कहा है कि इन संस्थावां नूं देश विच गैर कानूनी तौर ते काम करन वालियां सेवावां तक जनतक पहुंच प्रदान करन वालियां एप्लीकेशनां ते URL नूं हटाउण लई भी नोटिस जारी कीते गए ने। मंत्रालय ने कहा है कि आम लोकां दी सुरक्षा ते जागरूकता लई इह सलाह दित्ती जांदी है कि क्रिप्टो उत्पाद ते गैर फंगिबल टोकन NFTs गैर नेमबद्ध ने अते बहुत ज्यादा जोखम भरे हो सकदे ने। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी विच आज अंतरराष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर विखे 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औरतों ते बाल विकास बारे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके औरतों ते बाल विकास बारे राजमंत्री सावित्री ठाकुर ते उत्तर प्रदेश सरकार दे होर मंत्री भी मौजूद सन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह सेहतमंद ते समर्थ भारत दे संकल्प नूं अग्गे वधाउण दी मुहिम है। उन्हें कहा कि यह मुहिम हर मां दी सेहत, हर बच्चे दे पोषण अते हर परिवार दी खुशहाली नाल जुड़ी हुई है।
2: सुपोषित बचपन, स्वस्थ मातृत्व और समृद्ध परिवार ही विकसित भारत 2047 के संकल्प की सबसे मजबूत नींव है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप 9 सितंबर 2026 से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हो रहा है। हर वर्ष यह आयोजन हमें प्रेरित करता है कि हम पोषण के प्रति निरंतर जागरूक रहें और इसे अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इस वर्ष पोषण माह का हमारा संकल्प है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, जिसमें हमारा विशेष ध्यान विविधतापूर्ण और प्रोटीन युक्त आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पौष्टिक भोजन ECC और

की धारणाएं हैं। एक तो है कुछ पत्रकार जन्मजात होते हैं और कुछ पत्रकार बनाए जाते हैं। 17 वर्ष की अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रिकाओं का संपादन प्रकाशन कर आम जन जीवन को एक दिशा दी, संघर्ष का मार्ग बतलाया और भारत की गरिमा राष्ट्र का संकल्प सब आम लोगों तक पहुंचाया। जबकि उस समय हम लोग परतंत्र थे, परतंत्रता की सीमा देखिए और भारतेंदु जी का आदर्श देखिए। राष्ट्र संकल्पी एक पत्रकार जिन्होंने केवल 1867 में, आप कमाल की बात है कि उन्होंने एक ऐसी पत्रिका का संयोजन किया जो कवि वचन सुधा नाम से सचमुच में अपनी एक पहचान बनाए है, जो मूलतः साहित्यिक पत्रकारिता का तो आदर्श है ही। इसमें कवियों जैसे चंद्र बरदाई, कबीर जी, देव जी और अन्य अनेक कवियों की रचनाओं के साथ ही उसे एक साहित्यिक आधार प्रदान किया गया। समीक्षाएं, पुस्तक की अच्छी अच्छी समीक्षाएं प्रकाशित की गई, ललित निबंधों का संयोजन किया गया। इसके साथ साथ ही इन्होंने उसे मासिक जो आधार दिया था, 16 पृष्ठों की यह पत्रिका द्विभाषिक थी जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में इसका प्रकाशन रहा। आश्चर्य है कि 17 वर्ष की आयु में इन्होंने इस पत्रिका को एक मानक पहचान दी और फिर इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे साप्ताहिक बना दिया गया। लेकिन भारतेंदु का राष्ट्र प्रेम और देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरित करना, तत्पर करना इन पत्रिकाओं की अपनी महत्ता रही है। यही कारण है कि इन्हें जो मानक उपाधि प्रदान की गई थी, मजिस्ट्रेट थे ऑनरेरी, तो इन्होंने उसी समय अपनी वह उपाधि जो उन्हें प्रदान की गई थी वो भी लौटा दी और एक संग्राम को आधार देने वाले भारतेंदु जी ने इस बात की चिंता नहीं की कि स्थितियां विषम थी, लेकिन इनका निज भाषा प्रेम और राष्ट्र संकल्प सचमुच में इनकी पत्रकारिता के मूल में रहा है। तभी 1867 से इन्होंने पत्रकारिता का समारंभ किया, यह पत्रिका खूब चली, इसका एक अपना आधार बना, एक अपनी पहचान बनी। इसी के साथ इन्होंने एक अन्य पत्रिका जो हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से प्रकाशित हुई और उसे बाद में इन्होंने स्वयं उसे हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम भी दिया, जो इनके बाद भी मोहन चंद्रिका नाम से दूसरे एक मनीषी चलाते रहे। सचमुच में ये पत्रिका भी साहित्यिक और सामाजिक दोनों अर्थों में थी। ये एक कमाल की बात है कि भारतेंदु जो आधुनिक काल के प्रवर्तक साहित्यकार हैं, उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को भी एक सामाजिक, साहित्यिक और राष्ट्रीय अस्मिता अर्थवत्ता प्रदान की। इन तीन पत्रिकाओं के साथ ही उन्होंने एक चौथी पत्रिका, सचमुच में उसका नाम ही सुनते ही लगता है कि उसका लक्ष्य स्पष्ट है, वह थी बालबोधिनी। लगता है कि एक साहित्यकार, जागरूक साहित्यकार, प्रेरक युग प्रवर्तक साहित्यकार जब पत्रकारिता को आधार देता है तो वो कैसे पात्रों का, यानी एक किशोरावस्था की सखी, सभी महिलाओं, भारतीय महिलाओं को और खास तौर पे जो युवक युवतियां हैं और युवतियों को विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि भारत की अस्मिता, भारत की पहचान और स्वदेशी बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम नहीं चाहती, वो बहनों को संबोधित थी और संबोधन भी ऐसी शैली, ऐसी भाषा में जो आम आदमी को समझ आ सके। इसी तरह से उन्होंने कवि वचन सुधा में भी प्रतिज्ञा पत्र, जो कि बहुत ही अपने आप में एक मानक पहचान है, 1873 में उन्होंने वो घोषणा की थी कि हम स्वदेशी वस्त्र ही पहनेंगे, जो विदेशी हैं, विलायती

0: वस्त्र हैं हम नहीं पहनेंगे। ये एक घोषणा थी, एक घोष था, एक प्रेरणा थी, एक संकल्प था कि हम अपना बनाया कपड़ा ही धारण करेंगे। इससे राष्ट्रवादियों में जन चेतना आई और बाल बोधनी तो अपने आप में स्पष्ट है कि वो स्त्रियों के एक आदर्श के लिए कि देश को जगाओ, स्वयं जगो, देश स्वतंत्र होगा, स्वदेश होगा, तो हमारा अपना राज्य होगा, हमारा अपना व्यापार होगा। फिर एक अद्भुत बात है कि एक साहित्यकार, एक पत्रकार के बाद इनमें जो भक्ति भावना है वो भी चरम पर थी, तो इनकी एक आध्यात्मिक पत्रिका का भी उल्लेख मिलता है जो सचमुच में भगवत भक्ति तोषिणी, जो नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें आपकी आध्यात्मिक संपुष्टि होगी। और आप भारतवासी यदि आध्यात्मिक हैं, उनका नैतिक आदर्श है, वो राष्ट्र प्रेमी हैं, कृत संकल्पी हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम स्वतंत्र ना हों। सचमुच में वे नव जागरण के एक ऐसे अग्रदूत थे जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक मील पत्थर, एक आदर्श, एक प्रतिमानक पहचान का आधार दिया। जब भी हिंदी पत्रकारिता के विकास की बात की जाएगी तो भारतेंदु जी की पत्रकारिता को आदर्श रूप में लिया जाएगा।
1: हुण तुसी सुन रहे सी हिंदी वार्ता, भारतेंदु की पत्रकारिता। वार्ताकार सन डॉक्टर हुकम चंद राजपाल। आहुन समात फरमाइए चंद गजला।

दोस्तों जिंदगी असीन है प्रोग्राम चल रहा है और आज असी गल करते हैं कि छोटिया खुशियां असी किवें वड्डा बनाउणा है। असी अगर सोचते हैं अक्सर ऐसा सोचते ही सोचते हैं कि जो वड्डी सक्सैस सानू मिलेगी, वड्डी कामयाबी सानू मिलेगी जो साढ़े को ज़्यादा पैसा होगा, अपना घर होगा, जो तो कोई वड्डी इच्छा पूरी होगी ना, फिर असी खुशी होवांगे, खुशी होर मनावांगे, लोगों नाल गल्लां बातें करेंगे, खुशी का इजहार होर ज़्यादा करांगे, खुशी नूं होर ज़्यादा महसूस करांगे। पर सच की है, खुश रहने लई हमेशा कोई वड्डा कारण ही हुंदा। सवेर दी ठंडी हवा, किसी बच्चे नूं देख के जो थानू खुशी मिलती है, ये भी तो एक खुशी है ना। दोस्त दी कॉल, अते सब तो वड्डी गल जो असी अपने कोल मौजूद चीज़ां उन्हां दी कदर करनी शुरू कर दिंदे आ ना, तो जिंदगी अपने आप सोहनी लगन लग पैंदी, अपने आप हसीन लगन लग पैंदी है। गल है तुसी अपने कोल जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां दी कदर कर भी रहे हो या नहीं। सो अगर तुसी वाकई अपने आप च खुशी महसूस करना चाहते हो, अपनी नाल दी आले दुआले दी चीज़ां नू इंजॉय करना चाहते हो, तो जरूर जो थानू रब ने दिता एक पल कढ के उहदा शुक्र करो। देखो उन्हूं दिता की है थानू, असी कईआं नालों बहुत वधिया। इसलिए अज तो एक छोटा जी प्रैक्टिस करो, छोटा जी कोशिश करो कि रात नूं सोण तो पहला तीन चीज़ां याद करिए जिन्हां लई असी अज थैंकफुल हाँ, शुक्रगुजार हाँ उस रब दे। शायद तुसी महसूस करोगे कि साढ़े कोल सोचण तो किते वध कुछ है, पहला नालों असी बहुत चंगे हो गए हाँ। बस गल है अपने आप लई समा कढ़न दी, टाइम कढ़न दी। सो टाइम कढ़ो, जिंदगी सीन है प्रोग्राम सुनो, आनंद माणो जी अपनी जिंदगी दा। और हुण वेला हो गया प्रोग्राम दे अगले गीत दा जी, आनंद माणो जी इस गीत दा।

दोस्तों फिर मुड़ तो हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है लेके। कई बार असी अज नूं छड़ के कल की चिंता विच बैठे रहिंदे, कल की होवेगा, यह सवाल सानू अज की खुशी तो दूर ले जाता। पर सच यह है कि कल साढ़े कंट्रोल में ही नहीं हैगा। साढ़े कंट्रोल में है तो वह सिर्फ और सिर्फ अज अज का भी हुण की चल रहा। हुण मैं थोड़े नाल गलबात कर रहा, तुसीं मैनूं सुन रहे हो। साढ़े कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ हुण है, अज है। अज मुस्कुराना है या नहीं, अज किसी की मदद करनी है या नहीं, अज अपने सुपने वाल एक कदम बढ़ाना है या नहीं, ये साढ़े हाथ में होगा। साड़ी सोच उत्ते निर्भर करता है कि असी की सोचते हैं, किहदे वल सोचते और किदां सोचते हैं। और ये बिल्कुल असलियत गल है कि कई लोग ना अपना फ्यूचर सोच सोच के या पास्ट वाल सोच के अगे वध ही नहीं पाते। उन्होंने पता ही लगता कि उन्होंने जिंदगी विच की हो रहा है। इसलिए अपने प्रेजेंट नूं हुण नूं इंजॉय करो जी, क्योंकि हुण जिहड़ा चल रहा है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है चल रहा है। आनंद माणो जी नवें गीतां।

0: दोस्तों सचमुच देखो पता ही नहीं लग गया कि घंटा किवें लंघ गया। जिंदगी इसी ने प्रोग्राम चलता चलता अज हुण अपने अखीले दौर ते पहुंच गया और इस दे नाल ही जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जेड़ा पल तुहानूं मिलिया उन्हूं पूरे फुल इंजॉय दे नाल जीना और छोटिया छोटिया खुशियां दा आनंद माणना असीं यही सीखे अज्ज दे इस प्रोग्राम दे विच 45 मिनट दे प्रोग्राम दे विच। और हुण आनंद माणदे आ जी अज्ज दे इस प्रोग्राम दे अखीरले गीत दा जी पेश आ जी।
1: खुद को

0: ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
2: रेलवे की मॉडर्नाइजेशन जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उससे वापस मुंबई होगी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टूगेदर to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026.

0: 26 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया बैठक के दौरान राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया
4: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी
3: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान बचाव कार्य के उपकरण फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है
3: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: ध्यान दें आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक तो देर किस बात की आज ही आवेदन करें www.award

0: gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
3: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
5: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
3: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
3: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब एक पौधा

0: मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है, तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है, तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, नौवां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कौल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू,
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
2: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल युक्त पदार्थ हैं, जिनमें की प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइटरी डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह के जो कमियां हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है, उसको कम किया जा सकेगा और देश के, पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में, और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
0: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले, यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
3: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो, आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ, शिशु और जो माँ है, दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है, सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए, एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं, वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जांच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए, ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ, पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए, वो है स्तनपान करना। वो अभी भी, मतलब हमारे देश में क्या, इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स. बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उन

0: कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए, तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है, अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मच्छी आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो। ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउस होल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है। माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
1: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है?
2: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में, मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक श्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है। तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले, जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती हैं, उनसे भी बचाव मिलेगा। तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए जो सरकार, जैसे खासकर यूपी में और कई जगह, और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है, जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है?
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए। दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम, माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं, वो उसको नहीं पिलाने देती हैं, वो बच्चा ले जाती है, वो चाय पिलाएंगी, घुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है, शहद पिलाना है, क्योंकि रस्में पूरे करना ज्यादा जरूरी है। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा

0: एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा. और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर माँ ठीक नहीं है, अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है, तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो तो डेफिनेटली कम होगी. अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, थायराइड की कमी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है, जैसे B12 डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है. एंड आगे जाके जैसे नीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है. तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ. तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो माँ की जो मिसकंसेप्शन है इसको हटाना बहुत जरूरी है. और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजन्स बनेंगे. और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, आयरन की कमी होती है, वो बच्चों की IQ पॉइंट्स तो कम होते ही हैं. एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की IQ बहुत बढ़िया हो, नीट JEE निकाले, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं. अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके IQ पॉइंट्स में 20-30% की बढ़त हो सकती है. तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है.
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी. डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है. सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
2: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है. और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है. और उन तक जो इनफैक्ट इतना सारा डेटा है जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों के लिए भी प्रयास किया जा रहा है अभी होम विजिट्स में, और यू नो इनकी गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है. तो ये एक है के

0: उसकी वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक-एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी
0: जी
1: किया जाता है, पोषण
0: जी
1: पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है। अब सवाल ये
0: बिल्कुल
1: उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहां पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है। नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट। इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए, हिंदी में इतना

0: बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए, और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग ऑल्सो। जो RUTF की जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ, नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे, तो वहां पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक OPD के बाहर, जो छतरी के नीचे लगता था। तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे, और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे। तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया। RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को। आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है। और RUTF बहुत गाढ़ा होता है, तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले, और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनबाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक OPD होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए। जो भी, जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का। बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे, या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में, जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप, जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स ज्यादा खाते हैं, तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशंस करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है। और चीनी या नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है, उस तरीके से।
1: जी बिल्कुल। पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है। डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है।
2: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है। जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ, और जैसा आपने कहा कि अब हम 9वां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं। इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है। पर स्थायी रूप से डाइट और फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए, जैसे हमें 1-on-1 या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर, सभी की रोल है। और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि NRC में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है। और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, जो हर महीने VSSND डेज मनाए जाते हैं। तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद, तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.25 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है, उसमें ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे न

0: थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके। जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को जोड़कर और जो ये हमारे ग्रास रूट वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती है, लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है एस्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना। जब मैं एमडी कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए, तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शंस तो होंगे एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन हो गया जो कि हम अब आजकल एचबी भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं, ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है। बीमार बच्चा मैल न्यूरिश्ड हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिश्ड हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिश्ड हुआ। ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें। अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें, बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं
1: जी।
2: तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है
1: जी। डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर?
0: इस पर मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों

0: और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है। और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20 से 30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है, वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5 से 10% के बीच में है। तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सके, ना कि उसको निकाल दें जो चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो इसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा, पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को करेंगे। तो काफी और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जानकारी देने के
1: परिवार इस जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण विकास?
2: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला होती है, आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए, किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है। मुझे लगता है कि हमारी जो माएं हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में, मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है मदर्स हैं उनको आवाज दें, एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे चाहूंगी। आप प्लीज किताब पढ़िए कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए। न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए, अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए। आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्स हैं, खाना चाहिए कैसे, हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए, पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है। अगर हम उनको करेंगे ना,
1: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और किसी परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है। एक सशक्त समाज है और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू आनंद जी,
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया को। कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है
5: ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। लो हुण पेश है अज दियां मुख खबरां। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए तो वध दी कुल लागत वाले 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्टां नूं मंजूरी दे दित्ती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन्हां फैसलों नाल मुसाफरां दी आवाजाई दे संपर्क बेहतर होंगे। भारत ते श्रीलंका ने दोनों देशों की भलाई लई काम करन वास्ते अपने वचनबद्धता दी पुष्टि कीती है।

माली खुफिया इकाई दे डायरेक्टर ने 15 वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां सेवा प्रोवाइडर्स नू मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 दी पालना ना करन करके नोटिस जारी कीता है। आज तो 9वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है। इस मौके चंडीगढ़ विच पोषण जागरूकता दे भाईचारे हिस्सेदारी नू उत्साहित करन लई महीना पर चलन वाली मुहिम दी शुरुआत नू मनाउन लई एक जागरूकता रैली अते नुक्कड़ नाटक करवाए गए। पंजाब दे व्यापार ते संतक मंत्री अमन अरोड़ा ने दुबई च इन्वेस्टर पंजाब समागम नू संबोधित कीता। मंत्री ने प्रवासी पंजाबियों समेत यूए दे कारोबारां नू पंजाब विच निवेश करन दा सदा दिता है। पंजाब दे मुख चोन अधिकारी आनंदिता मित्रा ने 18 साल दी उम्र दे नौजवानां नू नवें वोटरां वजों रजिस्टर करन लई अपील कीती है। कीनिया दे सिख्या मंत्रालय दे एक उच्च पदरी वफद ने अज पंजाब अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे मनुखी अधिकार कमीशन दा दौरा कीता। भारत रेलवे वल्लों मुसाफिरां दी सहूलत अते रेल संपर्क नू बेहतर बनाउण दे उद्देश नाल लुधियाणा जाखल पैसेंजर ट्रेन नू जींद तक वधाउण दा फैसला कीता है। सरहदी सुरक्षा बल वल्लों 11 सितंबर नू जलंधर विच अपने फ्रंटियर सदक मुकाल विखे पेंशन अदालत लई जा रही है। पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ते विश्व दे पहले नंबर दी खिडारन शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज पड़ा 3 दे आपो अपने मुकाबलियां च सोने दे तमगे जीते। ए सन अज दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343 शरा 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएस दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो। इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी ते 10:02 हो रहे ने। लो हुण वेला हो गया है प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश दा। दोस्तों इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहाडियां फरमाइशां लवांगे, तुहाडे नाल गल्लां बातां करांगे और तुहाडे व्हाट्सएप राहीं जिहड़े साडे तक मैसेज आए हुए ओह मैसेजेस पढ़ांगे और तुहाडे मन पसंदीदा असीं गीत लवांगे। जे तुसीं साडे तक जुड़ना है साडा जिहड़ा व्हाट्सएप नंबर है 94-655-36-077। जी हाँ मैं दोबारा तो बोल रहा, साडा व्हाट्सएप नंबर है 94-655-36-077। ये मैसेज तुसी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर ते। इस नंबर ते सानू मैसेज करो और अपनी फरमाइश भेज दो सानू, असी तुहाडी फरमाइश पूरी करांगे। और नाल दे नाल साडा जिहड़ा लैंडलाइन नंबर है 0181-3342-173 साडे तक पहुंचण दा इक जरिया है। और जदों सानू फोन लांदे हो 0181 लाणा ना भुलणा। जी और साडे तक जिहड़े असी पहलां चल पईए मैसेजां वल, साडे तक जिहड़े मैसेज भेज रहे ने उह ने जी प्यार भरिया नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार जी, कहते कोई भी गीत लगा दो पसंद करते हैं। असी गल कर रहे हैं जगदीश थाकड़, श्रीमती रंजू बाई जी, युवराज सिंह हुणी गल कर रहे हैं, शिवांगी थाकड़ गल कर रहे हैं जी। इस तो बाद गल कर रहे हैं जी, सानू जिहड़ा मैसेज आया है चकला बाजार तो जिहड़ा मैसेज आया समाणा शहर, पप्पू राजा, संगीता राणी पप्पू हुणी गल कर रहे हैं, हंस मुखलाल, संजीव, सुनीता बंटी, आरजू महक, पूरा ही पूरा खुश दिल परिवार। जी हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम दे विच। और इस तो बाद जिहड़ा साढ़े तक मैसेज आया है, मैसेज करते हैं सानू शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक जी। बहुत बहुत स्वागत थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम दे विच। कहते कोई भी गीत ला दो। मुहम्मद सैयद अबासी और इस तो बाद जिहड़ा मैसेज है निगहत परवीन हसी, शहजनाज और फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, पूरा अबासी परिवार सानू मैसेज कर रहा है। थोड़ी फरमाइश प्रोग्राम दे विच साढ़े विक्की कनेडा ब्रदर्स कनेडा तो गल कर रहे, कहते कोई भी हिंदी गीत ला दो। जी हाँ बिल्कुल लगावांगे जी, हिंदी गीत लगावांगे। और इस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया सानू

नमस्कार करते ने कहते फिल्म डॉन दे विचों ये मेरा दिल प्यार का दीवाना जी बिल्कुल थोड़ी फरमाइश असी पूरी करांगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी सानू मैसेज करने वास्ते। लो जी इन्हां दी फरमाइश ते गीत थोड़े सामने पेश है जी, आनंद माणो जी इस गीत का।

जी हाँ, हुण तुसीं सुन रहे सी अलका यादव और उदित नारायण होना की आवाज़ दे विच गीत, और प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश चल रहा, और तुसीं साढ़े तक जुड़ो, असीं तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करदे हां, गल्लां बातें करदे हां, हाल चाल पुछदे हां, ते मौसम दे भी हाले चाले जिहड़ियां जिहदे जिहड़ा बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिहड़ा मौसम है चेंज हुंदा जा रहा, बदलता जा रहा, विच गर्मी हो रही है, और दो दिन पहला मौसम की जिहड़ी महक ना वो ठंडी ठंडी होनी शुरू हो गई सी सवेरे और शाम में, जो आप देखिए ना। सो अपना ख्याल रखो, जाता जाता मौसम कई बार बीमार कर जाता, सो खाण पीन का भी ख्याल रखो, कपड़े भी ठीक तरीके नाल पाओ, ढंग नाल पाओ, क्योंकि आने वाली सर्दियाँ मौसम बदलेगा तो जरूर पता नहीं कदों बदल दे। सो कपड़े भी अपने कढ़ने शुरू कर दे, हूँ पता नहीं कदों लोड़ पै जाए। जे हुण प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश दे विच साढ़े तक जुड़न लई साडा जिहड़ा वट्सएप नंबर है 94-655-36-070, मैं दोबारा बोल देवां 94-655-36-070, और जिहड़ा साडा लैंडलाइन नंबर है 0181-3342-173, मिला के साढ़े तक पहुँचो और साडे नाल गल्लां बातां करो, असीं तुहाडियां फरमाइशां लवांगे। लो हुण वेला हो गया है साडे जिहड़े अगले सानू मैसेजेस आए ने उन्हां नूं पढ़न दा। सानू मैसेज कर रहे ने पदमपुर जिला श्रीनगर राजस्थान तो, जिहड़ा मैसेज आया मेयर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका अरोड़ा, कहते ने जनता हवलदार तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ बुला दूं। जी हाँ बिल्कुल, ये भी फरमाइश थोड़ी पूरी करते हैं। चिलकाना जिला सहारनपुर तो गल करते हैं जरीफ अंसारी, नायम अंसारी, तो डॉक्टर अमिर मुन्ना नाजिम, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम दे विच, और कहते कि कोई भी गीत लगा दो फिल्म काजल दा। जी हाँ बिल्कुल, सानू मैसेज भेजते हैं मुहम्मद असमान अंसारी, मुहम्मद कलीम अंसारी, शामसुल कमर अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया जी साढ़े प्रोग्राम जुड़न लई। इस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया है सानू, बहुत सोहने तरीके नाल मैसेज भेजते हैं रणधीर बांगड़ जी, सानू मैसेज भेज रहे ने, गौरव मैसेज कर रहे ने, युगम वीरेन मनराज मनकीरत गुरमेजो गल सानू मैसेज भेज रहे ने। इस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया राम राम करते ने जी सुरेश गगनेजा चरालाबाद वैश तो गल कर रहे ने जी विशाल प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करते, शुक्रिया जी सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जी सानू मैसेज कर रहे ने, बहुत सारा प्यार जी आकाशवाणी जलंधर वालों। इस तो बाद मैसेज आया जी तरुण सूरी, रिशि सूरी, सुरेंद्र कुमार सूरी, शरदा सूरी, सुल्तानविंड रोड अमृतसर पंजाब तो मैसेज सानू भेज रहे ने, डेरा कलोनी फाजिलका थर्मासागर, इंद्रजीत मंगा USA तो मैसेज भेज रहे ने। इस तो बाद मलोड़ तो सानू मैसेज आया मलोड़ तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल कनेडा तो, दिशा मोला जगतार।

मलकीत सिंह हीर, मनमोहन सिंह हीर, शंभू सिंह हीर, गुरमीत सिंह हीर फौजी, सुखजीत सिंह हीर, जुजार सिंह हीर, कुलदीप सिंह हीर, सुखमन सिंह हीर, सारा हीर परिवार सानू मैसेज कर रहे ने, कहते कोई भी मैसेज कोई भी गीत लगा दो। गुरसाहिब सिंह हीर जी हाँ, लो जी हुण वेला हो गया अगले गीत का जी, और आनंद माणो जी इस गीत का जी।

जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया जी साढ़े तक मैसेज पहुँचाने लई। और इस तो बाद जिहड़ा सानूं मैसेज आया कहिंदे तुहाडी फरमाइश प्रोग्राम चल रहा है, सी आनंद माण रहे जी गीत दा, और अनिल अमर दिलीप वर्मा राजू तारमकार रंजन रजक संजीव वर्मा विनीत गुप्ता अरुण गनुजिया संजय सोनी पवन यादव सुनील जैन लालू सोना मोना हनी यस सौम्या अते सारे परिवार वालों सानू मैसेज आया। और इस दे नाल ही हुण वेला हो गया प्रोग्राम दे अगले गीत दा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्रोतियां दा साडे नाल जुड़न वास्ते। लो जी आनंद माणो जी इस गीत दा।

जी हाँ, हुणे तुसीं लता मंगेशकर हुणे दी आवाज़ दे विच बलमान जी पाई आया री गीत सुन रहे सी। लो हुण वेला हो गया साढ़े इस प्रोग्राम दे कुछ पल रह गए ने। हुण वेला हो गया साढ़े इस प्रोग्राम दे विच व्हाट्सएप दे मैसेजेस पढ़न दा। मैसेज भेजे ने मलियान सरदना मेरठ तो मैसेज भेजे ने अनिल जैन जैन साहब सैयन जैन बहुत बहुत स्वागत थोड़ा पहला भी कर चुके हैं बार बार मैसेज एक बार जो पढ़े गए तो पढ़े जान। और इस तो बाद जोड़ा मैसेज आया सब मैसेज करते ने राजू टुटेजा खुश दिल जीनू मनु करनपुरी तो जोड़ा मैसेज आया सानू। उस तो बाद जोड़ा मैसेज आया प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर जोड़ा कुलदीप सिंह सीमू दपिंदर बहुत बहुत शुक्रिया जी साढ़े प्रोग्राम जुड़न वास्ते। और इस तो बाद सानू जोड़ा मैसेज आया कहिंदे ने कि मेला फिल्म का एक गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट।

0: 367 किलोमीटर 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनिल कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो, स्वागत है जी तोड़ा। मैं तोड़ा आर्य दोस्त अमित बोल रहे हैं। हेलो।
1: सत
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने, किस जगह तो?
1: राजू
0: जी। ते की हाल चाल तोड़े शहर दे जी?
1: बहुत वधिया ने सर जी, ठीक ठाक। त्योहारां दे दिन ने रौनकां लगियां होईयां बाजारां नूं।
0: वाह जी वाह, वाह जी वाह। ठीक है जी, ठीक है जी। ते काम कार भी ठीक ने?
1: हाँ जी, काम कार भी ठीक है सर जी।
0: बल्ले बल्ले
1: तुम
0: बल्ले,
1: दसो
0: वेरी
1: ना,
0: गुड वेरी गुड। तो मौसम का की हाल चाल तुहाडे शहर चंडीगढ़ दा?
1: मौसम का जी गड़बड़ाई है, बारिश नहीं हो रही।
0: बारिश नहीं हो रही? ठीक है ठीक है। चलो अगे ना, कुछ गर्मी घटी के उन्नी की गर्मी है। ठीक
1: हाँ जी, सवेर शाम से फर्क पै गया मौसम च।
0: है ठीक है। तो राजू जी, तुहाडी कॉल लगी, बहुत खुशी की गल है। अज केड़ा गीत सानू सारे नू सुनाओगे?
1: सर जी, चन्न परदेसी फिल्म दा सुना जी, यार तेरे मेरिया रंगन
0: मैं रंजन
1: तेरा।
0: तेरा। वाह जी वाह, बहुत प्यारा गीत है जी, बहुत पुरानी पिक्चर है। तो राजू जी, तुम मूवी देखी हुई है कि सिर्फ गीत ही सुने?
1: हाँ जी देखी, हर जी में राज बब्बर, ओम पुरी, अमरीश पुरी, शर्मा विज।
0: जी।
1: हाँ, बनियाद नाटक जानती होंगी जी।
0: ते तुसी लगदा पुराने गीतां दे शौकीन हो, ज्यादा लाइक पुराने गीतां नू करदे हो?
1: वीसीआर देख ले जी सर जी, वीसीआर उस
0: अच्छा अच्छा वीसीआर वाला मॉडल है। वाह जी वाह।
1: हाँ, तो बैठ के देखने फिल्म।
0: जी, उदो वाकई फिल्म देखी मतलब होंगे कि फिल्म देखने चले हैं जी, फिल्म फैमिली देखने जा रही है, या वीसीआर लगा सारे काम छोड़ दो तो पहला फिल्म देख लो। हाँ
1: फिल्म
0: जी, वो भी समा सी देखो, है ना।
1: खराब करके।
0: हाँ चलो राजू जी, गलबात करके बहुत आनंद आया, दोबारा जरूर कॉल करना। तुम्हारी पसंद का गीत तब तक पहुंच रहा है मोहम्मद रफी के साथियों की आवाज़ प्रोग्राम चल रहा जी। सौगात।

0: हेलो।
1: हेलो नमस्ते।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी? नाम दसो अपना।
1: मैं सिंदर सिंह वारवाल, मौजमगीर खान साहब।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। केड़ा की सुनना चाहोगे?
1: कल ही मैं 11 दा ट्रैक।
0: ठीक है जी, कॉल करने शुक्रिया। थोड़ी पसंद आ गई, तुहाडे तक पहुंच रहा जी।

0: बहुत ही प्यारा गीत जी, यदि फरमाइश सानू गर्ग साहब ने कीती सी, उम्मीद करते हैं तुसी भी इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम चल रहा जी सौगात, तुसी ट्यून किया है आकाशवाणी डीटीएच की पंजाब प्रसारण सेवा का जलंधर केंद्र। तो हम उसी गलबात करेंगे प्रोग्राम सौगात के अगले कॉलर के नाल। हैलो
1: हैलो, सत श्री अकाल जी।
0: कौन बोल रहे ने जी? सत श्री अकाल, किहड़े शहर तो बोल रहे हो जी?
1: जी असीं बोल रहे हां दिल्ली शहर तों।
0: वाह जी वाह, दिल्ली, दिल हिंदुस्तान दा। माहौल ठीक है? चलो चलो, अज थोड़ी कॉल लगी है, केड़ा गीत सुनाओगे? ठीक है जी, ठीक है जी, चोर नहीं कॉल करने। शुक्रिया मनजीत कौर जी, थोड़ी पसंद आ गई, तुहाडे तक पहुंच रहा जी, धन्यवाद।

0: प्रोग्राम चले जी सुगात एक बार फिर तो थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी। हम अस गलबात करते हैं जी प्रोग्राम दे अगले कॉलर दे नाल। हेलो
1: हेलो अनुज भाई नमस्कार जी।
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं जी किने शहर तो?
1: हाँ जी अमृतपाल जी बिट्टू बोल रहा हूँ दूरदर्शन बैठिया के लिए से ये बोल रहा
0: हूँ। वाह जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है बिट्टू जी की हाल चाल ने?
1: बहुत बढ़िया तो सब मंच ला रहे हैं
0: जी
1: बड़ी याद तो सुन रहे हैं बहुत वधिया लग रहा है
0: जो तो वर्ग के प्यारे प्यारे श्रोता इन मीठी मीठी गल्ला करते सू होर मोटिवेशन मिलती है जी होर दिल करता कि प्रोग्राम वधिया वधिया बना के पेश करिए। चलो चलो ठीक है फिर प्रोग्राम पूरा सुनना है कि कॉल लगी तो एंड तक पूरे गीत सुनने सारे मेरे ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: ठीक है
1: प्रोग्राम
0: सुनी जाना बिल्कुल ठीक है। दसो केड़ा गीत सुनाइए अज फिर?
1: अज गुरदास मान ना सुना दे
0: टुट गई तरक करके बहुत प्यारा गीत है। शुक्रिया जी कॉल करने तो गलबात करके बहुत चंगा लगा बिटू जी। उम्मीद करते हैं दोबारा भी कॉल करोगे। तब तक पहुंच रहे जी गुरदास मान होना गायक पंजाबी की प्रोग्राम सुन रहे हो सुगात।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो सर, नमस्कार जी। सर
0: नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं? किस जगह? तो कांता
1: मैं कांता वर्मा बोल रही जी, हिमाचल प्रदेश शर्म शिमला कसौली से जी।
0: वर्मा जी, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल थोड़े?
1: बढ़िया है जी।
0: आपका दिन आज कैसा गुजरा? ठीक गुजरा कि कैसे?
1: हाँ जी
0: आज का दिन अच्छा गुजरा?
1: हाँ जी, यहाँ पे मतलब ठंडा होगा मौसम।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। और दिन में भी मौका मिलता है आपको रेडियो सुनने का, सिर्फ रात को ही सुन पाते हैं?
1: ये दिन में तो
0: अच्छा, ठीक है जी।
1: आंगनबाड़ी में होते ना जी, पोषण माह चला हुआ जी।
0: अच्छा, आज
1: हाँ
0: कौन सा
1: जी,
0: गीत सुनवाएंगे? ठीक
1: गीत सुना दो आप, बब्बू मान की आवाज में सुना देना जी।
0: है जी, ठीक है जी। और बताइए।
1: और बहुत बढ़िया है जी, और यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है जी।
0: ठीक है ठीक है ठीक है
1: हाँ
0: जी।
1: जी, चलो माना जी। हाँ,
0: हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
1: एक लाइन सुना दो सर जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर।
1: पीले राधिके, पीले राधिके, फिर पहाड़ों आईया, दूध पीले राधिके, नियो पीना नियो पीना, वो मेरे रुसी जांदे कृष्ण।

वाह जी वाह, कंता वर्मा जी आपकी आवाज बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छा लगा आपका पहाड़ी गीत सुन के। आओ सुनते हैं जी आपकी पसंद का पंजाबी गीत।

सुनना चाहते सी जी हिमाचल तो कांता वर्मा जी। उम्मीद करते हैं तुसी भी इस गीत का पूरा पूरा आनंद माणिया होगा और हम असी वट्सएप मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। पहला मैसेज सानू भेज रहे हैं जी एस मुल्तानी, मास्टर मोहन लाल, दृष्टि, आशु, दक्ष, जलंधर तो। एक दिन कोई भी पंजाबी गीत सानू सुनवा दिओ। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजन दे लई। और सोनू डल मोत्रा इन्होंने बब्बू मान का गीत सुन के थैंक यू भेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप सिंह सनी अमृतसर तो मैसेज भेज रहे हैं जी, इन्हों का भी स्वागत है। पाली जंदा हुशियारपुर रहने वाले ने, एक कहते हैं गुरदास मान का कोई गीत सुनवा दो। हमने पा थोड़ी देर पहले ही गुरदास मान जी का गीत सुनिया तो उम्मीद करते हैं तुम इंजॉय किया होगा, दोबारा भी जरूर प्ले करा। बस प्रोग्राम में इसी तरह बने रहो जी। दिलकुशा मार्केट जलंधर तो सतीश गुलियानी, तुषार गुलियानी, युवराज गुलियानी, एक दिन कोई भी पंजाबी पुराना गीत सानू सुनवा दो। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजन दे लई। इन्हां सब दी रली मिली फरमाइश ते आओ सुनदे हां जी सुरिंदर कौर प्रकाश कौर का एक युगल पंजाबी गीत।

0: और 3:03 शर्म कराने कुछ भजन कुछ भक्ति गीत। 4 बजे से तुम सूर्य तड़के श्री दरबार साहब अमृतसर लाए चलांगे जिथे तुम शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करोगे। ऐसी सवेरे 4 बजे तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा की रूपरेखा प्रोग्राम सुगात में जारी रखते हैं जी। तो आप गलबात करांगे प्रोग्राम के अगले कॉलर के नाल। हैलो
1: हैलो
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं कि शहर तो कि पिंड ग्रह तो जी हाँ जी जी बहुत बहुत थोड़ा स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच की हाल चाल ने
1: सुनवा
0: रहे हो
1: ਅੱਜ ਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੁਣਾਗਾ ਸਾਨੂੰ
0: ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

0: बहुत ही प्यारा गीत असी सुन रहे सी कंठ क्लीयर होने दी आवाज़ां दे विच कड़ी सुन कह रहे कि बस प्रोग्राम समाप्ति वाली बट फिर भी असी एक कॉल जरूर जरूर लवांगे कोई वीआईपी नहीं साडे वैसे तो सारे कॉलर वीआईपी होंदे पर बहुत दूरों कॉल आई है जी लेट अस सी कौन ने और कित्थों बोल रहे ने जी हैलो
1: हैलो
0: सत श्री अकाल जी कौन बोल रहे ने किहड़ी जगह तों
1: मेरा
0: नाम
1: जो है मैं विनीपेग तो बोल रही हूँ। विनीपेग तो बोल दो। वेलकम जी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है थोड़े अपने प्रोग्राम स्वागत विच की हाल चाल ने
0: ठीक है जी मेरा ये फोन पहली बार ही लग गया।

सौगात उन्हें तो सुनने से प्रोग्राम लाइव फोन आधारित खतान आधारित और व्हाट्सएप मैसेज आधारित आकाशवाणी डीटीएच ते पंजाब प्रसारण सेवा का यह जलंधर केंद्र है। साढ़े स्टूडियो की कड़ी मुताबिक इस सवेर के 1 बज रहे हैं। समय हो रहा जी प्रोग्राम पंजाबी मेलोडीज कीता। आओ जी फिर आगाज करते हैं प्रोग्राम का पंजाबी मेलोडीज कीता।

0: गया
1: दो सौ विच पानी पै गया दो सौ विच पानी पै गया मैं इत्थे जोगा रह गया मैं इत्थे जोगा रह गया और रब्बा रही सवारी कली कलैणी।

दिवाजदी कड़ा वजदा कड़ोली वजदी कित गागर वजदी कित गागर वजदी कित गागर वजदी कित गागर वजदी कित गागर वजदी।

0: कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ। इस शब्द का गायन किया सी भाई सतविंदर सिंह अते भाई हरविंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। प्रभु नाल प्रीत मिलाप का सुभाग हर किसे नू प्राप्त नहीं हुंदा। विशेष गुणा वाली जीव रूप स्त्री जां गुरसिख ही ए लाहा लै सकदे हन। हुण प्रश्न है कि वह किहड़े गुण धारण करिए कि प्रभु वस विच आ जावे। बाबा फरीद जी 126वें श्लोक विच प्रश्न करदे ने, कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हाउ करी, जित वस आवै कंत। ते आप जी खुद ही 127वें श्लोक विच उत्तर भी दिंदे ने, निवण सो अखर खवण गुण, जेहबा मणिया मंत, ए त्रै पैणे वेस कर ता वस आवी कंत। पर सवाल ए भी है कि किना गुणा करके प्राणा दे साईं प्रभु नाल मिलया जा सकता है। ना मेरा रूप है, ना मेरे पास बुद्धि है, मैं तां दूर परदेस विच वसदी हाँ। ना मेरे पास तन है, ना जोबन है, मैं तां अनाथ हाँ। हे प्रभु जी मेरी सार लो। हे प्रभु मैं तां तैनू ढूंढ ढूंढ के वैरागण हो गई हाँ, दर्शना दी तिहाई हाँ। मैनू साध संगत बख्श के मेरी तृष्णा अग्नि शांत करो। राग गौड़ी पूर्बीच फरमान है, कवन गुण प्राण पात मिलाओ मेरी माई। ए वार्ता सुना रहे ने डॉक्टर निशा शर्मा।
1: ए इलाही फुरमान श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी पूर्बी महला पंजमा सिरलेख अधीन उचारे शब्द दी पंक्ति है। इस पंक्ति अनुसार प्रभु प्राणा दा दाता है, सिरजन हार है। जपजी साहिब दे आरंभ विच मूल मंत्र विच असी उस परमात्मा दे गुण गांदे हुए गुरु नानक देव जी दे इना शब्दां नू रोज दोहरांदे हां। परमात्मा एक है, सारी सृष्टि विच सर्व व्यापक है, उसका नाम सच्चा है, ओहो सिरजनहार है, उसने ही सारी कुदरत नू रचिया है, ओहो भय तो रहत है, निर्वैर है, काल दे

प्रभाव तों मुक्त है। गुरबाणी अनुसार सर्व गुणा वाला परमात्मा अकाल पुरख व्यंत है ते असी जीव अब गुणा नाल भरे हुए हाँ। हे प्रभु, फिर तेरा साडे नाल मिलाप किमें हो सकता है? प्रभु जिंद दा सहारा है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी उस अकाल पुरख अगे नमस्कार करदे हुए फुरमांदे हन के उठद्यां बैठद्यां सुत्यां जागद्यां मैं हर वेले तैनू याद करां। मेरा मन सुख दुख मेरी हर एक पीड़ा प्रभु जी आप दे अगे अरजोई बनके पेश हुंदी है। जो प्रभु करदा है उसे विच मेरी भलाई है। सवाल पैदा हुंदा है कि फिर कीर्ति क्यों करनी है? प्रभु दा जस क्यों गाउणा है? इसदा उत्तर है कि इस गाउण दे नाल ही मनुख दे अवगुण दूर हुंदे जांदे हन ते गुणा विच वाधा हुंदा जांदा है। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, इस शब्द विच पंजवे पातशाह गुरु अर्जन देव जी उस प्रभु अगे उस प्राणा दी दात देन वाले उस सुख दाते अगे अरदास करदे हन कि हे मेरी माँ, मैं केड़े गुण अपनावां जिस नाल मेरी उस परम पिता नाल प्रीत पै जावे, मेरा प्रभु मैनू मिल सके। सब अबगण मैं गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई, ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना। इस करके प्रभु अग्गे बेनती ही करनी बनदी है कि हे समर्थ प्रभु, आप जी दे अग्गे बार बार नतमस्तक हाँ, सानू किरपा करके डोलन तो बचाओ। खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन को हो फिरत तिसाई। जीव रूपी इस्त्री दे रूप विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी फरमांदे हन कि अपने प्राणपति परमात्मा दे दर्शन वास्ते प्यासी फिर रही हाँ। उस प्रीतम नू लभदी लभदी कमली होई पई हाँ। जदों जीव आत्मा अपने प्रीतम दे मिलाप दी तांग विच व्याकुल हो जांदी है तां हो अपने उस प्यारे नू लभण लई थां थां भटकदी है। जीव इस्त्री दा मन प्रभु दे दर्शन लई इन्ना प्यासा हुंदा है कि उस प्रीतम प्यारे दे मिलाप तो बिना कोई होर चीज उसनू तृप्त नहीं कर सकदी। असल बैराग दुनिया दे त्याग तो नहीं बल्कि मन विच्चों झूठे मोह नू छड्ड के प्रभु दे दर्शना दी सच्ची प्यास पैदा करन दे नाल है। गुण कीरत निद मोरी, तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस ओट प्रभ तोरी। इना पंक्तियां विच गुरु अर्जन देव जी ने फुरमाया है उस प्रभु दे गुणा दी सिफत सलाह ही मनुख लई सब तो वड्डा खजाना है। जीवन दी असल पूंजी उस दाते दी सिफत सलाह अते गुणा नू अपने जीवन विच धारण करना है। मनुख आम तौर ते सुख रस धन मान सन्मान रिश्तियां अते पदार्थां विचों लभदा है पर असली आनंद दा स्रोत तां हो सच्चा प्रभु ही है। दीन दयाल किरपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन बुझाई। वार्ता दे सिरलेख वाले शब्द विच गुरबाणी दा फरमान है कि प्रभु जो के गरीबां निमाणियां अते दुखियां उत्ते दया करन वाला है उसदी मेहर दे नाल साधु जना दी संगत मिलदी है। इस साध संगत दे विच आके जीव दे अंदरों जो उसदे प्रीतम दे विछोड़े दी अग मन दी बेचैनी अते तड़प हुंदी है उह शांत हो जांदी है। जदों जीव साधु जना दी संगत विच विचरदा है तां उसनू गुरु दे शब्द ते नाम दे राहीं जीवन दी सूझ मिलदी है। भगत जना दी संगत करन नाल मन हौली हौली टिक जांदा है ते अंदरली अशांति दूर हो जांदी है। सच्चे गुरु दी मेहर नाल उसनू नाम दा अमृत मिलदा है। गुरमुखां दी संगत विच आके उसदे अंदर सह

0: सतिया मन सुन दुख जे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा यारा ते कुड़ियारा खारो बाबे कार एक होंदा कह चले ताओ जिना बिकाई कार जलसा जिया पुरिया लोहा आकार आया कार ओ जग सतू है जाने तिना बतेरी सार नान भगता दुख सलान सच नाम दार सदा आनंद रहे दिन राती
1: ਅੰਗਾਰ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ।

0: काहे आया काहे आया काहे
1: पौड़ी सच्चा सह वेखो जिन सचो सच वरताया जिस तू देख मिले सच तक ने सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया तिन कै हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाने मन मुखी जन गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया

0: लेखन लेखा से
1: सुनो माला पहला पर पर गड़ी लदिए पर पर परिये साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड़िए खा पर यह जेते वर्ष

0: श्लोक महला पहला सच काल पूर्व चैतल काल के बेदाल दियो बीज बतलाया गया अभियुग बेदाल जेक हो तब विरुचि हृत होए नानक पाए बारह गोरे रंग न सोए कैबज गुम चढ़ाइए सरंग पतन होए नानक भगती जे रपे कूड़े सोए ना कोए महला पहला
1: भगवान दो राजा मैं तक कूड़ो आशकदार काम ने सब पूछिए बह बह करे विचार आंदी रही ज्ञान होनी भाई परे मुरदार ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सीगा।

सागर पार उतारन को, संतत ही सत संगत संग, सुरंग रते जस गावत है, त्रम पंथ तरो धरनी धर आप, रहे लिव तार ना तावत है, मथुरा पन पाग पले उनके, मन इच्छत ही फल पावत है, राव

मथुरा पान पाग पले उनके, मन इच्छत ही फल पावत हैं। राव के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरा

संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई है परतीत परतीत है आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुरु सेव अलखगत जाकी।

0: तरंग निर्मल नाम सुधा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर अथा अतबड सो पर सदा सब विदित नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर कल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर काल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
1: प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास त्या जस जन का इक पड़े सुने गावे प्रभाता करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विध सहत करूं कंचन तन हुए परस पारस को ज्योत स्वरूपी त्यां तरूं जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेह पूर्वो विद वर्णन सत गुर गुर से अलख गत जाकी।

0: नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज ते लोक प्रगासे देखत दस भटक ब्रह्म भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा तुलबत आलस मुझो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थेरे साचो तखत गुरु रामदास तारे संसार मां मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीरतवंत सदा सुख संपत रिद्र सिद्ध न छोटे साथ दान बड़ा अतवंत महाबल सेवक दास कहे तथ ताहे कहा परवाह कहूं की जाके बसीस तरे गुर हाथ
1: सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन तन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत नि जतारी अगम ज्ञान रस रस यो यो गुरु अमरदास कर तारक यो वश वाहो वाहो कर त्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा कुभ भगत हर के जोगण अमरेख जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पणम तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगत पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो
2: जाको मन ध्यान तारे फेरत तो सकल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेवा मन गहे न तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूठ पेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बधाई दई

0: मनसाकार समरंत तुझे मर काम क्रोध मिट्यो जूतनि बाचाकार समरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जूखनि कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बल भट जस गायो श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तय हर परम पद पायो।
1: जे सतगुर सिमरंत नायन के तिमर मिटाखिन जे सतगुर सिमरंत रिजा हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नवनिध पावे सोई रामदास गुर बल पर मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाईया सो सतगुर सिमरो नरहो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ो पास ताते गौर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिवे अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास का गुर रामदास।
0: नानक नाम निरंजन जानेओ किन्नी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी

0: बड़ाई मोह मल बेवस कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान स्यों चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन भव सागर बंदियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पत सचो तख्त जोग भोग संजुत बल गुर रामदास सच सल पण तू अटल राज अपग दल
1: गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर सुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन रे हुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरै नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरै एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कह नाम गुरमुख रह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे तू सतगुर चौ जुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुर आदि जुगाद अनाद कला तारी त्रैले अगम निगल उदरन जरा जमे आरोए गुरु अमरदास तीर्थ प्यो परगामी तारन तरन अगे अंतक बदे न सज कव गुरु रामदास तेरी सरन।

नाम न वसै मन आई, नाम न वसै मन माही, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बद्दी मारियन, मोह काल उठ जाहि। महला पहला जा लो ऐसी रीत जित

जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाईऐ। नानक तिन विटहो वारिया, जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याईऐ। जिन सेविया तिन फल पाया,

बल जीवाहि गुरु एक ओंकार वाहि गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्वरूप गुरु नानक लईते आई फिर अंगद गुरु ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिए कर नौन दियावे ताई सब थाई हुई सहाय दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जीवावे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नाही हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सर